0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधू
1: सो मेनी अटैक्स
0: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स द फाइटर जेट कॉकपिट्स And the world's most defining interviews.
1: It's incredible.
0: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
0: Hard facts.
1: War-struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
2: In the Kargil area.
1: North Ukraine.
3: In France. In Italy.
1: At Srinagar.
3: I am Mr. Trump.
1: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV. मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज

0: आबादी सबसे ज्यादा सक्रिय थे तो उस टाइम थे, पूरा हाथ इनका उनके साथ था। और जितनी किलिंग झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र, जितनी किलिंग उस टाइम हुई है कभी नहीं हुई, इसलिए ये तो ना ही बोले अच्छा है।
1: दिमागी नक्सल जो कांग्रेस पार्टी है, जिसमें चिदंबरम साहब का लगातार आप कह रहे हैं कि आज तो उन्होंने कहा है कि मैं दिमागी नक्सल वो हैं, और एक वो आदमी है जिसमें दिमाग ही नहीं, इसलिए वो नक्सल नहीं है, वो राहुल गांधी जी हैं।
2: Sarcastic tweet, and we should understand that the language the Prime Minister used in the from the Red Fort is unacceptable. He called Dimaki Naxals, those people who are having socialist mindset, who believes in a socialist society, who believes that the wealth of India should not be given to few of the rich people in India.
3: जब किसान आंदोलन करे तो किसान खालिस्तानी हो जाता है, अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जेंजी जिसको बोला जाना है, इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। और लगातार इस तरह का बयान कहते हैं, कभी अर्बन नक्सल बोलते, मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं।
4: Well, on the 15th of August, on Independence Day, Prime Minister Narendra Modi targeted what he termed Dimagi Naxals from the Red Fort, warning that while armed Naxalism has been eliminated, those harboring the ideology are still working to spread violence and discord. In fact, Prime Minister Modi also called for identifying and isolating them and steering India's youth towards the mainstream. Listen in to those comments.
5: बरसों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा, और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
4: Meanwhile, Union Minister Kiran Rijiju has said that Prime Minister Modi did not refer to the opposition leaders as people with a Maoist mindset. He said this amid swipes by Congress leaders, including P. Chidambaram, on the matter. My colleague Vasudha Venugopal has spoken exclusively to the Parliamentary Affairs Minister. Listen in to what he told NDTV earlier.
6: Prime Minister's mention of Dimagi Naxals has made a lot of people think. The opposition is saying that this is an attempt to shun criticism down, and they're saying that, you know, this should not be done, while the Prime Minister has also announced a lot of things for youngsters. How would you summarize what the Prime Minister was intending to say?
7: I think everybody should welcome Prime Minister's address, especially when he says that the armed Naxals are almost extinct. During our government, Modiji has made a very clear statement that the armed struggle of the Naxals, which is basically against the Constitution of India, must be put to end. And Home Minister Amit Shah Ji had clearly stated on the floor of the House that the armed Maoist movement is almost done. They are no more a threat to the nation. But however, some intellectuals who propagate the Maoist ideology, the Naxalism, they are still available.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: पाटीदार है इनकी,
1: बिल्कुल मध्य प्रदेश से आती है कविता पाटीदार, और ओबीसी से आती है वो दलित है वो भी आ सकती है, अरुणा आ सकती है जो अभी तेलंगाना से पार्लियामेंट है, डी के अरुणा, उसकी भी पॉसिबिलिटी।

रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

0: I'm told that there'll be a specific department to look at data and analytics, jo states mein already ho raha hai, so that you know social media and IT don't get clubbed into one.
1: देखिए, जब नितिन गडकरी अध्यक्ष बने तो उन्होंने तमाम मोर्चे बनाए थे, फिर अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने काफ़ी मोर्चे कम कर दिए, तो उन्होंने कहा था जो अन्य ऐसे मोर्चे उनको सबको हटा दो। तो अब देखिए, अब अल्पसंख्यक मोर्चा तो कोई बहुत महत्व नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा बना दिया है, उसके बाद SC मोर्चा है, ST मोर्चा है, किसान मोर्चा है, अधिवक्ता मोर्चा भी नया बनाने का चल रहा है बनाने का। तो अब क्या किस तरीके से किसको बनाते हैं, इनके अध्यक्ष कौन है, वो
0: लीगल डिपार्टमेंट तो है ना सर?
1: नहीं, लीगल डिपार्टमेंट है, लेकिन अब अधिवक्ता अलग बनाने का प्लान कर रहे हैं कि भाई लीगल डिपार्टमेंट और लीगल इश्यूज को देखेगा,
2: अधिवक्ता का अलग बना दो।
0: सो देयर इज अ लीगल डिपार्टमेंट, देयर इज अ इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट।
1: नमन मिश्रा ने जिस तरह से किया, तो भाई अब ऐसे लोगों को भी देखने के लिए कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए कि ऐसा वो मतलब ब्लंडर ना करे। तो मुझे लगा कि तमाम तरह के होंगे, लेकिन अब जो बाकी कमिटीज भी है, जैसे ऑफिस मेंटेनेंस कमेटी है, फिर ऑफिस बनाने की कमेटी है, फिर संपर्क कमेटी है, भूपेन यादव उसके इंचार्ज है, संपर्क कमेटी भूपेन यादव देख रहे हैं, बाकी पूनम महाजन है, पीयूष गोयल बड़ी बड़ी कमेटियों के, मैं अरविंद मेनन है कि जो पूरी इंडिया में लैंड खरीदी जा रही है बीजेपी ऑफिसेस के लिए, उसके इंचार्ज अरविंद मेनन है पूरी, तो बड़ी कमेटीज भी बनी हुई है। तो वो बहुत मतलब उसमें दो चार आप अगर छोड़ देंगे जो प्रोमिनेंट है, बाकी का बहुत ज़्यादा कोई मतलब है नहीं कमेटी का, बना दिया और ये तो मतलब पोस्ट है कि कुछ नहीं, तो आपको काम दे दिया कि अब ये कमेटी में काम देखो। तो मुझे लगता है कि वो कमेटी बनी रहेंगी, उसमें कुछ चेंजेस जरूर होंगे उसके अंदर, जैसे अब कैलाश तिजोरी की है वो अब कमेटी से बाहर हो जाएंगे, पीयूष गोयल वो मिनिस्टर हो गए तो वो बाहर हो जाएंगे, नरेंद्र सिंह तोमर थे वो बाहर हो जाएंगे, पूनम महाजन है वो बाहर होकर दूसरी कमेटी में आ जाएंगी, तो चेंजेस होंगे जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल गई है। कोई बड़ा चेंज मुझे लगता है इसके अंदर नहीं होगा, मतलब कोई नई कमेटी बनेगी इसकी संभावना नजर नहीं आ रही, उन्हीं कमेटी में नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएगी।
3: सेंट्रल मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ वेरियस कमिटीज, सो पीयूष गोयल और समबडी कैन कंटिन्यू, बट आई डोंट थिंक ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस।
2: बट राइट नाउ आई थिंक द मेन फोकस इज ऑल गोइंग टू बी ऑन हु गेट्स टू बी इन द पार्लियामेंट्री बोर्ड नंबर वन एंड हु गेट्स टू बी द जनरल सेक्रेटरी।
1: बिल्कुल।
2: एंड इफ देयर इज एनी चेंज इन द जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच वी हैव डिसाइडेड मोर और लेस सीम्स अनलाइकली एज ऑफ नाउ, बट सिंस वी आर स्पीकिंग ऑफ उत्तर प्रदेश, सम नेम्स दैट आई वाज जस्ट रीडिंग ऑनलाइन, which is, since you were talking about Harish Dwivedi, Dr. Mahendra Singh is there, Amarpal Maurya, Ashok Kataria, Anoop Gupta, Santosh Singh, Vijay Bahadur Pathak, and Ashwini Tyagi. These are some of the names, and like Shrikant Sharma was also being mentioned. So fair equation here of the different castes as well. So you've got from the Dalit community, Bhola Singh was another name, yes, that you were mentioning, people who are members of parliament. So interesting names that are doing the rounds. We'll keep our focus on this. A very quick break. More on the other side. Don't go anywhere.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ हैं सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

0: test report and the voice sample report. And after verification and scrutiny, the court will decide on taking cognizance on the charge sheet.
1: All right. Thank you for joining us live there. There is a controversial statement by a Congress MP that has emerged now. This is on the Vande Mataram row. The Congress MP has said, "I will not sing Vande Mataram, never sung it before, never will. And this is Imran Masood who has spoken out, and he has said, "I have the right to follow my religion," and goes on to then say, "Go ahead and promote Vande Mataram if you want to. What difference does it make to me? I will do only as much as I want to, and I will do that."
2: अरे भाई, तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। भाई मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा, आ गई समझ में आपको? बस खड़ा हो जाऊंगा, नहीं गाऊंगा बिल्कुल भी नहीं। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद फिर मुझसे बात करिएगा। ये कहां से आया था और किस तरह लिखा गया था और क्यों लिखा गया था, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा। ये लोगों में जो गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। आप मजबूर नहीं कर सकते।
1: My colleague Jainendra now joins me live on the story. Controversial comment there by the Congress MP Imran Masood. Jainendra, is this a dare of sorts? Jainendra, can you hear me? There seems to be an audio problem there with my colleague Jainendra. We'll try and reconnect with him, but that's a Congress MP who's made a controversial statement on the Vande Mataram row. This comes, of course, at a time when there is a huge political face-off between the BJP and the Congress over the flag hoisting that took place at the Congress headquarters, where the BJP alleges that Sonia Gandhi didn't want the entire national song to play out, something that the Congress has defended. But that face-off, of course, taking another turn with an FIR also that has been registered, and the Delhi police will be probing the incident. But now you have the Congress MP Imran Masood making this statement. I'm going to try and connect with Jainendra once again. Jainendra, Imran Masood making that controversial comment, should one see this as a dare?
3: कांग्रेस एमपी इमरान मसूद इज विथ अस। इमरान भाई, जो वंदे मातरम को लेकर आपने बयान दिया है कि आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे, इसको लेकर विवाद हो गया है, क्यों आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे?
2: अरे भाई, मैंने कब मना करा कि मैं सम्मान नहीं करूंगा? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने 98 में डिसाइड कर दिया था कि किस तरह सम्मान की क्या होगी। आप गाइए, मैं सावधान खड़ा हो जाऊंगा, मेरे पे पढ़ना भी नहीं आता, मेरे बोलना भी नहीं आता। और दूसरी बात, भारत के संविधान के अंदर मुझे मेरा धर्म मानने की आज़ादी है और मैं अपना धर्म मानूंगा। मैं अपने इबादत के तरीके को आप पर नहीं थोपूंगा और आपका इबादत का तरीका मुझ पर नहीं थोपा जा सकता, बिल्कुल स्पष्ट है। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसको आप कुछ भी बताते रहिए, चूँकि आपको एजेंडा चलाना है, बीजेपी के लोगों को इसको एजेंडा बनाना है। बीजेपी के लोगों के लिए छात्रों की पिटाई एजेंडा नहीं है, बीजेपी के लोगों के लिए छात्रों के साथ जो जाती हुई वो एजेंडा नहीं है। ये नैतिक साहस उनमें नहीं था कि 20 दिन देश के सारे सांसद विपक्ष के बैठ करके सांसद के बाहर धरना दे रहे हैं और आप में नैतिकता होती है, एहसास होता कि आप देश से माफी मांगते, आप में नहीं है। आपको एजेंडा दूसरा चलाना है, अभी उठा ले वंदे मातरम।
3: बात एजेंडे की नहीं सर, वंदे मातरम तो देश की आजादी का नारा था और उसको लेकर अब जब नया नियम बनाया कि 6 स्टैंजा गाना है तो आप
2: सुनिए, पूरा होने दीजिए ना हमें। आप नियम कुछ भी बनाते रहे, कल को आप कह देंगे हमें नमाज नहीं पढ़नी तो नमाज पढ़ने से खारिज कर देंगे क्या आप हमको? संख्या बल के आधार पर आप हमको नमाज पढ़ने से थोड़ी रोक देंगे क्या? आपने संसद के अंदर संख्या बल के आधार पर कुछ भी बना देंगे? संविधान के अंदर जो संविधान की मूल भावना है, मुझे मेरे धर्म के धार्मिक आज़ादी मिली है, उस धार्मिक आज़ादी को आप नहीं छीन सकते। और न मैं आपके कहने से धार्मिक आज़ादी को अपने धर्म को छोड़ूंगा।
3: आप ये कह रहे हैं कि सम्मान करेंगे जब गाया जाएगा, आप सावधान की मुद्रा में होंगे, लेकिन
2: निश्चित रूप से
3: लेकिन गाएंगे
2: नहीं,
3: पूरा नहीं, या दो स्टैंड रूप
2: नहीं नहीं मैं तो खड़ा हो जाऊंगा सावधान,
3: दो स्टैंड
2: सावधान बस।
3: लेकिन ऐतराज क्या है इमरान भाई? ये तो देश की इबादत की बात है।
2: अल्लाह के अलावा मेरे यहां सजदा नहीं है, नहीं करूंगा मैं, आप सम्मान करूंगा, और पूरा एक नया विवाद, एक नई बहस छिड़ जाएगी। लेकिन जो मेरे ऊपर ही आप आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पहले आनंद मठ पढ़ लेना चाहिए।
3: उसमें क्या प्रॉब्लम?
2: बस उसी में, वहीं से तो आया ना, पढ़ लीजिए उसे, फिर मुझे बता दीजिएगा।
3: नहीं, आनंद मठ का जो हवाला दे रहे हैं, मतलब उसमें क्या आपको क्या आपत्ति?
2: अच्छा, आप पढ़ लीजिए ना, मुझे मेरी आपत्ति मत पूछिए, आप पढ़ लीजिएगा।
3: आप लाइव है दर्शकों के लिए भी,
2: मैं बता, देखिए आनंद मठ में जो कुछ लिखा है, आनंद मठ में जो कुछ लिखा है, वो कोई भी इंसान, मैं समझता हूँ कि जो ये फैलाने वाली बात कर रहे हैं, वो नहीं चाहेगा कि वो हो, क्योंकि ना हम लोग नफरत वाले लोग नहीं हैं, हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता वाले लोग हैं, जो अपने धर्म को, आपको अपने धर्म को माने, मैं अपने धर्म को मानूं।
1: आज बीजेपी मिस्टर भंडारी जॉइनिंग मी ऑन द फोन लाइन। मिस्टर भंडारी, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू व्हाट मिस्टर मसूद हैज जस्ट सेड?
4: Madam, he is just taking forward what he has learned from Srimati Sonia Gandhi. Even Srimati Sonia Gandhi insulted Vande Mataram by attempting to stop it. And after that, Rahul Gandhi said in an audio, in fact, in the conversation, that he will not sing it. So it's aptly clear that the Dimagi Naxal mindset, which the Honorable Prime Minister spoke about, the Congress party, by disrespecting Vande Mataram, is reflecting it. And we are not surprised. This is why Congress today has become the front of the fringe. And let them take it to the people of the country. People of the country respect the national flag, sing Vande Mataram, and they know that Congress, by not doing so, has insulted the patriotism of 140 crore Indians.
1: All right, Mr. Bhandari, thank you for sharing your view there and your response to what Mr. Masood has said. The political row over Vande Mataram has intensified. BJP has stepped up, like you can see, its attack on the Congress, demanding an apology from the top leadership. The Delhi police said that an inquiry is being conducted into the complaints of the alleged Vande Mataram insult row. So far, 3 complaints have been filed against Sonia Gandhi, with complainants seeking an apology and legal action. The BJP has demanded that an FIR be registered and has threatened to approach the High Court if action is not taken. Yesterday, protests were held across several states, from Jammu and Kashmir to Tamil Nadu, West Bengal and Rajasthan. BJP workers took to the streets holding protests, candle marches and torch rallies.
5: India has witnessed yesterday about the actions of the Congress party. The Congress party has been a chronic opposer of Vande Mataram. Yesterday, during the flag hoisting ceremony which was being conducted in the national office of the Congress party, during which Vande Mataram was played, Srimati Sonia Gandhi interrupted the event, and we have seen, the nation has seen, that she was obstructing and instructing her party cadres to stop the Vande Mataram. This attracts penal action.
6: आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि SCV स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वंदे मातरम को मान्यता एक तरह से लाल किले से लगाकर पूरे देश में उसको अपनाया गया और वंदे मातरम पूरा अपनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ना इंदौर में पूरा वंदे मातरम गाती, ना उनके नेता वहाँ दिल्ली में उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। हमारे लिए वंदे मातरम आज़ादी के दीवानों के समय से आज भी अत्यंत श्रद्धा आस्था का केंद्र है। पूरा देश आंदोलित है कांग्रेस के व्यवहार कारण से, कांग्रेस के लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए।
7: नहीं, पश्चिमों के हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। वंदे मातरम हमारे देश की जान है, जन गण मन हमारी प्राण है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, कल हृदय में रखेंगे इसको।
8: Mallikarjuna Kharge, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, when they refused to stand for the entire national song being sung, it should be looked as an insult on our motherland, on the soil of India, on soil of Bharat, and every citizen who lives and breathes in India. It's an insult by the Congress party, and the BJP strongly condemns it. And as nationalists, we are standing together today condemning the Congress, and we are demanding that an apology being met out to all the 140 crore Indians who are deeply hurt by the Congress's actions.
9: Leaders of the national movement decided that the first 2 stanzas of Vande Mataram is highly inspiring, that need to be sung everywhere. And it was Rabindranath Tagore who sang it in the All India Congress Committee session. in the late 1930s, if I remember.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न इंडिया इज चेजिंग गियर्स फास्टर बोल्डर मोर रेस्टलेस इट डजंट स्टॉप Neither do we. NDTV, when it really matters.
1: 21 days in Kashmir. People have bombarded me, friends, with requests for an unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
2: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
1: They are now India's smallest, but possibly the most powerful crime family. Cough syrup. Has killed at least 25 children.
3: कोई जरूरत तो उसको इंटरव्यू देने की।
1: डायकॉर्ड साहब ऐसे मत कीजिए।
3: लोग देख रहे हैं तो कर रहा है।
1: Suddenly people.

0: पोल गिर गया है, करंट आ गया है, जिसके कारण भगदड़ मची और उस भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई है। मैं सभी मृत परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।
1: हम लोग बात भी कर रहे हैं सारे प्रशासन से, लोग हॉस्पिटल में भी बात हो रही है और अभी पीड़ित परिवार के यहाँ जा रहे हैं। और इस तरह की घटना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये घटना दोबारा नहीं दोहराई जाए। क्या कारण रहा है, क्या कमी रहा है, इसको हम लोग देखेंगे, इस पर कार्रवाई भी होगी।
2: मुआवजे का ऐलान कर दिया गया 4 लाख रुपये सरकार
1: से। देखिए, मुआवजा तो एक फॉर्मेलिटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बात हुई थी, किसी की ज़िंदगी चली जाती है, वो मुआवजा से भरपाई नहीं हो सकता। फिर भी जो हो सकता है उनके इलाज से लेकर के बेहतर व्यवस्था बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे।
2: जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी,
1: निश्चित तौर पर पूरी समीक्षा की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना घटित नहीं हो। आपको जानकारी है कि यह सुविधा में 2002 में इस तरह की हुआ था। आज मैं 5 बजे सुबह में उठ करके अपने कार्यकर्ताओं से, लोगों से बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो वहाँ चलता है शिविर कंवरियों के लिए, उसको लेकर करके, और सारा सामान्य था। 6:30 बजे के बाद ये घटना घटित हुआ है, तो निश्चित तौर पर इस घटना पर थोड़ा हम और संज्ञान में विशेष डिटेल में लेंगे।
3: Pug has been crowned the world's ugliest dog of the year. Jinny Lu, who was rescued from the dog meat trade in South Korea before finding a home in California, took the top prize at the 50th annual contest in Santa Rosa. The win earned Jinny Lu and her owner $5,000, a trophy and a trip to New York. Take a look at this report.
4: Jinny Lu, a 6-year-old pug, just won the ugliest dog of the year at a contest in Santa Rosa, California. Jinny Lu was rescued from a dog meat trade in South Korea before finding a home in California. Jinny Lu and owner won $5,000, a trophy and a trip to New York for taking the top spot in the world's ugliest dog contest. The contest isn't aimed at poking fun at funny-looking dogs, rather raises awareness and encourages pet adoption while celebrating dog beauty in all shapes and sizes. The contest is in its 50th edition this year, and many come to participate from around the world. Jinny Lu was the runner-up in 2025, and this was her 4th attempt to win the top prize. With her bulging eyes and hanging tongue, this beauty loves to snuggle and barks at her own reflection in the mirror. Here's hoping Jinny Lu continues to redefine the definition of beauty in the dog world and serves her reign with dignity and grace. Mayank Chaudhary, NDTV.
3: Huge showdown over Prime Minister Modi's dimagi naxal remark. Congress goes up.
5: Thode mein zyada swaad ke hit to hai iski khas baat.
6: Wow, mama, kya swaad hai?
5: Arey, mere raja.

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न, इंडिया इज चेजिंग गियर्स फास्टर, बोल्डर, मोर रेस्टलेस। It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो द स्टोरीज दैट मैटर द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबा केसरी।
1: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
2: रियली
1: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
2: How?
1: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
2: It's the Mahi way. थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: जानते हैं मैं Elite Matrimony क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, every day.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न, इंडिया इज चेजिंग गियर्स faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
2: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्जेस।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
7: Bade bade imtihano se guzarta hai. Waqt tarashta hai jise. Jo jaane kya kya na karta hai. Jab tak khushbu sabse behtareen na ban jaye, aaram ke liye nahi thehrta hai. जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमैन बनना नहीं आसान है।
8: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न, इंडिया इज चेजिंग गियर्स फास्टर, बोल्डर, मोर रेस्टलेस। इट डजंट स्टॉप, neither do we. NDTV, when it really matters.
9: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
10: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy Howard.
9: The show that sets the prime time agenda.
10: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
9: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV.

0: वहाँ पर बड़ी भूमिका कर सकते हैं, जिसमें से विजेंद्र पांडा जो कंटिन्यू किया है, और राष्ट्रीय सचिव में मुझे लगता है सबको हटा दिया, सिर्फ अनिल एंटनी जो है इज द ओनली जनरल सेक्रेटरी स्टेट से जो कंटिन्यू किया है सेक्रेटरी के रूप में, बाकी सारे बदल दिए गए, तो ये नाम है मुझे लगता है। लेकिन युवाओं की टीम जो दी है और
1: बड़ौदा सेक्रेटरीज में को छोड़ करके
0: सारे बदल दिए, दूसरा बड़ौदा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 35 ईयर्स ओल्ड है, उनको युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी है, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा नाम है आने वाले समय के लिए, कि उनको पार्टी तैयार कर रही है।
1: एंड इनफैक्ट वन नेम अमंग द सेक्रेटरीज आशुतोष जी, टैलेंट हंट जो हुआ था उसमें से संदीप पाठक ही हिट द लॉटरी, मेनी पीपल वर थिंकिंग राघव चड्ढा बट इट वाज संदीप पाठक, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट नेम?
2: I think it's a good sign that the BJP is realizing the talent because Sandeep Pathak, I know him not much, but I know him personally. He is a very, very, he is one man who works in shadows. He's a nut and bolt person. He's not high profile, but if you give him a task, he will deliver. So I think this Sandeep Pathak has to be watched for another 10-12 years. You will realize that he will grow steadily in the party. And he has a great future in the BJP. I think it's a great loss for the Aam Aadmi Party that it lost a man like him. And he's extremely honest, extremely humble, very polite. And apne kaam se kaam rakhna aur jo kaam diya jaye usko deliver karna. ये संदीप पाठक की खासियत है और मुझे लगता है कि he will be an asset for the party in the long run.
1: And in Punjab, the Aam Aadmi Party will be looking over their shoulders.
0: संदीप पाठक ने बोल दिया कि बाकी पर सीट हार रहे हैं। वो गए थे बाकीपुर में, उन्होंने आके रिपोर्ट दी थी कि बाकीपुर हार रहे हैं, जबकि सबने कहा था कि बाकीपुर सीट हम जीत रहे हैं।
1: अच्छा, बाकीपुर में उन्होंने सर्वे किया था
0: और उन्होंने आके फीडबैक दिया था पार्टी को कि बाकीपुर सीट प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हार रही है।
2: पद्मजा,
1: या यस, गो ऑन
2: आई व्हाट समीर हैज सेड, लेट मी ऐड दिस। इन 2017 व्हेन आम आदमी टुक इट फॉर ग्रांटेड दैट दे आर गोइंग टू विन इलेक्शंस, इट इज संदीप पाठक who told before the elections were announced that Aam Aadmi Party is going to lose. And this is what exactly has happened. So that's what I'm saying. He's a very solid person. He's a very solid man, but works in shadows.
1: Interesting. So a lot of these people who are strategists, who are working on regular surveys, who are trying to gauge the mood on the ground, and at a time like this, when the sands are constantly shifting, these are the people that the BJP would want to have in their ranks. Let's see how it goes. For the time being, all gentlemen, thank you very much for joining us. Moving on to our second big focus tonight, a story we have been relentlessly tracking for weeks now, Jharkhand students' protests. It is now day 24. The students are still on the streets. They are still hungry after full 2 weeks, 14 days. They haven't had food and they're still demanding answers. The question unfortunately remains the same. How long will selective attention to students' issues continue? Faced with angry protests, with students burning effigies of Rahul Gandhi and Hemant Soren and Tejaswi Yadav, Rahul Gandhi today wrote to Chief Minister Hemant Soren calling the students' demands legitimate and urging him to personally go and meet the protesters. Now, while Ranchi waits for Rahul's presence, he is already looking ahead to his next Chhatron Ki Goonj rally, which is to take place in Pune on the 22nd of August. And that's exactly what the question being asked today is. If the students' demands are legitimate, why not listen to their goonj yourself? Why just a letter? Meanwhile, the students are turning up the heat. They have set August 18 as a fresh deadline for the state government to act on their demands. That is tomorrow. And if their demands are not met, they will be gherawing the chief minister's residence on the 20th. The deadline is here. And Rahul Gandhi's Ranchi visit is still missing. The question is, for how long?
3: अपना आंदोलन का रूपरेखा अब चेंज कर रहे हैं, बहुत हो गई गांधीवादी, बहुत हो गई सभ्य तरीके से, अब इन लोग नहीं समझ रहे, हम अब भगत सिंह का रुख अपनाने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार अगर हमारे सीने में गोली भी मार दे, हम गोली खाने के लिए तैयार है।
4: सरकार हमारी बात को मान नहीं रही है, ऐसे आज वार्ता होना है, उसमें पता नहीं सरकार हमारी बात को जो डिमांड है वो स्वीकार करती है या नहीं। इस सरकार को चाहिए कि यथाशीघ्र हमारी जो डिमांड है उसको पूरा करें।
5: देखिए, सरकार बच्चों को टहला रही, अब याद करिए पहले भी बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, धरना पर बैठे हुए थे, वार्ता नहीं कर रही थी। जब बच्चों ने कहा कि 10 तारीख को हम लोग विधानसभा के मार्च करेंगे, तब सरकार सत्ते में आई और इसके बाद आनन फनन में 4 लोगों की कमेटी बनाई और दुनिया को दिखाने लगे कि हम वार्ता कर रहे हैं।
6: राहुल गांधी को और हेमंत सोरेन को लेटर लेटर खेलना बंद करना चाहिए। कभी हेमंत सोरेन लेटर लिखते हैं, छात्रों को कहते हैं कि

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे। थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज.
3: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है. जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है. जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है. तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है.
4: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न, इंडिया इज चेजिंग गियर्स फास्टर, बोल्डर, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters.
5: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
6: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal.
5: The show that sets the prime time agenda.
6: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
5: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV.

0: सरकार काम करेगी, रिफॉर्म्स में जहां तक मेरा मानना है कि परीक्षाएं कैसे होनी चाहिए कैसे नहीं होनी चाहिए, इसका पहले से ही SOP बना हुआ है। मंत्रीगणों के टीम के साथ बैठने के दौरान ही वो चीज़ें सुलझ गई थी, बैकलॉग की भी बात सुलझ गई थी और कई जगह पर लोग नियुक्त भी हुए हैं, उसको लेकर छात्रों के तरफ से भी और मंत्रीगणों के तरफ से भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए।
1: And NDTV's Prabhakar Kumar also joining us live from Patna tonight. He was also in Ranchi reporting extensively on these protests. Prabhakar, do you see the protests now winding up? Just stay with me for a moment, Prabhakar. Devendra Nath Matho has reacted. Let's listen in. He's been on hunger strike for 16 days now.
2: हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि छात्र का मुद्दा को गंभीरता से लेते हुए हमारे मांगों को पूरी किया है और सबसे बड़ी बात जांच भी बहुत बारीकी से करते हुए एक एक भ्रष्ट व्यक्ति को दबोचने का काम कर रहे हैं, पकड़ने का काम कर रहे हैं। सरगना के गिरोह के जो असली मगरमच्छ है उन वहाँ तक पहुँचने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और इस भ्रष्ट सिस्टम को जड़ तक ख़त्म करने के लिए हम लोग छात्र और इस जांच को सपोर्ट करेंगे। और अभी रिफॉर्म का जो अभी प्रोसेस है हम लोग उसके लिए अपना संघर्ष को जारी रखेंगे।
3: अब जैसे 20 तारीख को जो कार्यक्रम था वो सर,
2: देखिए अगर हमारा 20 तारीख का कार्यक्रम हो या आगे का कार्यक्रम हो या इससे पहले का कार्यक्रम हो, हम लोग अपना डिमांड और मुद्दा को लेकर के आए थे। अगर हमारा मुद्दा ही मैंने पूरी हो जाएगी हमारी डिमांड।
1: And remember, NDTV is always on the ground when it really matters. And that's the reason why you've seen Prabhakar, Padmaja and our team being the only mainstream network that was in Ranchi since the beginning of the protests until now, reporting on this big, big breakthrough for the students of Jharkhand. We'll have much more on that right after this break. Stay with us.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: Your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most

0: evening. It's later on Monday evening. We've got a lot of headlines coming up. Take a look. After weeks of intense student-led demonstrations across Jharkhand, the Soren-led government has accepted the primary demands of protesting aspirants. The JSSC-CGL examination is now cancelled. Students remain adamant on a CBI probe. That's not happened so far. The BJP announces a new national team under Nitin Naveen. Smriti Irani and Ram Madhav make a big comeback. A big Nadi Shakti and youth push with an eye on the UP election 2027. A huge showdown over the Prime Minister's Dimagi Naxal remark. The Congress goes after the Prime Minister and asks, how can people of this country be Dimagi Naxals? The BJP hits back and says the Prime Minister's remarks have forced Dimagi Naxals to come out in 24 hours. The Vijay government completes 100 days in power. The TVK lists out achievements of his government. The leader of the opposition, Uday Nidhi, says that the claims don't match the ground reality and brands TVK a real government. The Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar will meet the Tamil Nadu Chief Minister Vijay in Chennai on Thursday. This meeting comes amid the shooting of alleged poachers and the Kaveri water dispute. Air India continues to screen all its pilots for drugs. Two more pilots test positive and preliminary tests. Both have been de-rostered pending final results. Well, there's good news for students in Jharkhand as the Hemant Soren government has finally agreed to their demand and have cancelled the JSSC-CGL exam. The decision comes after days of protests and mounting pressure from students demanding action over the examination process. Announcing the cabinet decision, the chief minister said that a comprehensive inquiry will be conducted into all errors, minor or major, that have occurred since 2014, and that all exams linked to the TDPL, including the JSSC, will be cancelled. Hailing the government, Devendranath Mahato, who's been on a hunger strike since the 2nd of August, said that he's satisfied by the government-led probe and is grateful to students for their support and to the government for accepting the demands of students.
1: आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की. इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है. इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं. इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है. जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है. हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है. अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए.
0: Well, joining us now, a very special guest. I'm joined by Devendranath Mahato, the student leader and youth activist. Devendra, shukriya, aap hamare saath jud rahe hain is waqt. Aapka ye ladai, aapka ye jang, jo kaafi hafton ke liye chala hai, shayad ye ab samapt hone wala hai, ya to samapt ho chuka hai. Aapke sab demands को मंजूर को एक्सेप्ट किया गया है? आप लोग सीबीआई डिमांड भी सीबीआई प्रोब भी मांग रहे थे, फिलहाल उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है।
2: ये सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि छात्र का संघर्ष बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत हद तक माने हैं, उस पर भले कही नहीं गई है, लेकिन बाकी जितना भी डिमांड था वो सारे डिमांड पूरी कर ली गई है। और इसके लिए विशेष रूप से आपके चैनल के पूरे टीम को और जितने भी सहयोग के छात्र, अभिभावक, सम्मानित शिक्षक, समाजसेवी, प्रशासन के टीम, डॉक्टर्स के टीम, सफाई कर्मी, सबको हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं।

0: वैसे उनको भी धन्यवाद जो बिलिंगकिट के माध्यम से और जोमेटो के माध्यम से हम लोग को अजनबी बनकर पानी पहुंचाया, नाश्ता पहुंचाया, सबको धन्यवाद। लेकिन हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम की गारंटी नहीं मिलती है कि आगे भविष्य में कभी भी पेपर लीक ना हो, अगर हो तो उसको पकड़ा जाए और उसको कड़ी कार्रवाई हो, आजीवन कारावास हो, तभी जाकर के हम लोग का छात्र को न्याय मिलेगा। क्योंकि मैं अपने जीवन में कई एग्जाम को रद्द होते हुए देखा है, कई एग्जाम पर सीबीआई जांच देखा है, कई एग्जाम पर सीआईडी जांच देखा है। आज हम बात करते हैं इस सीजीएल एग्जाम रद्द की, वो एग्जाम को मैं 29 जनवरी 2024 को भी रद्द कराया था, दोबारा एग्जाम हुई, दोबारा पेपर लीक हुआ, धांधली हुई। तो जांच और रद्द सॉल्यूशन नहीं है, ये छात्र के साथ न्याय नहीं है।
1: देवेंद्र एक चीज बताइए, आपका एक प्राइमरी कंसर्न ये थर्ड पार्टी कंडक्टिंग एजेंसीज था, TDPL जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी था, उसके खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके अलावा अब क्या होना चाहिए, अगर आप एग्जाम क्लीनअप चाहते हैं तो एक अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए?
0: देखिए, एक ऐसा कानून लाए या एक ऐसा निगरानी कमेटी बनाए जो हर एग्जाम का हर स्टेज पर ऑडिट हो, उसका रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। भाई मान के चलिए पीटी एग्जाम हुआ, उसका क्या एसओपी का पालन हुई, क्या नियमावली का पालन हुआ, मेंस पर क्या हुआ, इंटरव्यू लाइव हो, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड हो, पारदर्शिता सबका जवाबदेही हो। उसको अभी क्या होता है कि संवैधानिक संस्था को कोई निगरानी नहीं कर सकता, इस हवाला देते हुए खूब धांधली हो रहा है। अगर निगरानी के लिए अभी मैंने क्वेश्चन ही सेट करना है, कई स्टेप पर सेट होते हैं, लेकिन हर स्टेज का एक ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए कि भाई वो क्या किया, कितना पारदर्शिता किया। फिर अगला स्टेप पर होगा तो पहला स्टेप अलग मालूम नहीं होना चाहिए। इस तरीके का एक प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि हमने ये सब नियम का, सब शर्त का, पूरा एसओपी का, नियमावली का हमने पालन किया है, इस तरीके से पारदर्शिता सुनिश्चित हो। इसके लिए विधानसभा में कानून बनाने की आवश्यकता है तो बनाया जाए, संविधान को संशोधन करने की आवश्यकता है तो वो भी किया जाए। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि मेरा जैसा कुर्बानी और आने वाले भविष्य में कोई दूसरे बच्चों को देना पड़े।
1: नहीं नहीं, एकदम सही बात कह रहे हैं देवेंद्र, और ये किसी भी हमारे किसी भी स्टेट में किसी भी एग्जाम में ये नहीं होना चाहिए। आपने एक बड़ा जीत जीता है आज, और बधाई हो इसके लिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू NDTV। शुक्रिया, थैंक यू। Well, the BJP has now unveiled its new national team with key appointments across the organization, including several prominent leaders, women, youth, and a strong representation from Uttar Pradesh ahead of the elections. Smriti Irani is back as the General Secretary. Ram Madhav has also been roped in, and Vasundhara Raje as Vice Presidents, and Vinod Tawde as General Secretary of the organization. Piyush Goyal gets the post of Treasurer, while the former Aam Aadmi Party leader Sandeep Pathak has been appointed National Secretary. Continuing with women leaders in Nitin Naveen's new team, the BJP has several prominent faces across key organizational posts, including Smriti Irani, Vasundhara Raje, and D. Purandeshwari. The Uttar Pradesh focus, as far as the UP focus is concerned, the BJP has given the state several key organizational posts, including General Secretary, Vice Presidents, National Secretaries, and both OBC and Minority Morcha leaders. There's also a mix of youth and experience, with the BJP having retained Vinod Tawde and Sunil Bansal as General Secretaries. Three former Chief Ministers also feature prominently in this new team.
2: मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है, और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं, और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी, और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद, और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेंगे।
3: देखिए, निश्चित ही बहुत बड़ी जवाबदारी है, और गर्व भी महसूस होता है, एक सामान्य से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर की जवाबदारी दी गई है। मैं प्रदेश के संगठन को, राष्ट्रीय संगठन को, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय मोदी जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का और कार्यकर्ता भाइयों का

0: देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब।
1: अगर प्रधानमंत्री जी जरा सी नजरें झुका के देख लें तो अपने इर्द गिर्द अपने चारों तरफ वही मिलेंगे जो संविधान को नहीं मानते, वही मिलेंगे जो देश के अंदर नफरत बांटते हैं, वहीं वही मिलेंगे जो धर्म देख करके लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वही मिलेंगे जो दूसरों के धार्मिक स्थलों को तोड़ने का काम करते हैं, वही सब लोग मिलेंगे जो जाति देख करके उनकी बारात नहीं निकलने देते, वही सब लोग मिलेंगे जो आदिवासियों को उजाड़ने के अंदर विश्वास रखते हैं। सब लोग प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द आपको मिल जाएंगे।
2: Well, the Vijay government has now completed its first 100 days in Tamil Nadu, with the Chief Minister highlighting a series of initiatives and investment commitments. The government says Tamil Nadu secured 67,542 crores in investments during the first 100 days, while also announcing a 1 lakh crore investment conclave. Among the achievements listed are the closure of 717 liquor shops, a women's safety task force, anti-narcotics measures, skill training for 12 lakh people, and expanded welfare schemes. Meanwhile, the Tamil Nadu leader of opposition, Udayanidhi Stalin, said that the ground reality is different than what the chief minister has listed as achievements. Not only the DMK, but the AIA DMK and the BJP have also taken jibes at the chief minister.

0: நடந்தா கைது, பேசுனா கைது, சோசியல் மீடியாவில் ஒரு போஸ்ட் போட்டா கைது அப்படின்னு ஒரு மோசமான பாசிச அரசாக இன்றைக்கு இந்த அரசாங்கம் செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த அளவுக்கு இந்த அரசுக்கு இன்செக்யூரிட்டி ரொம்ப அதிகம். இன்னைக்கு தூங்கி எந்திரிச்சா யாரை கைது பண்ணலாம்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு ஷெட்யூல் போட்டு இன்னைக்கு இந்த அரசு கைது நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருது.
1: 100 days of kindergartens, not sure when they are going to graduate to the school levels, high school levels, and deliver for the welfare of people of Tamil Nadu. And Mr. Vijay is the number one student in the kindergarten, entertaining all.
2: All right, well, we are joined now by a very special guest. He'll join us in a few moments from now, Deepak Maske. He heads the BJP's IT cell. Thank you very much, Deepak ji, for being with us. A huge responsibility. You're replacing Amit Malviya in this very big role. I'm just curious to know, how important is it for the BJP, with elections coming up, to spread the message, not only of the government, but of the party? How is social media essential for communications more than ever before?
3: देखिए, दो बातों का जवाब मैंने दूंगा कि एक आपने कहा कि आई एम रिप्लेसिंग अमित मालवी. हमारी पार्टी में हम किसी को रिप्लेस नहीं करते हैं, हमको अलग अलग दायित्व मिलता है
2: जी.
3: उन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक संभाला था और पार्टी ने अब मुझे दायित्व दिया है. और एक तो ये विषय था, दूसरा सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, करता रहा है और आने वाले समय में और भी करेगा. हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो अच्छा कंटेंट है, जो ट्रू कंटेंट है, उसको अलग अलग मीडियम से लोगों तक पहुंचाना. अलग अलग राज्यों की तासीर अलग अलग होती है, तो आइडियाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एम ये रहेगा कि सरकार की उपलब्धियां, और अगर विदेशी पार्टियां अगर कुछ भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है, तो उसको ट्रू कंटेंट के साथ लोगों तक पहुंचाना.
2: दीपक जी, हमने कुछ दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पोस्ट कर रहे थे. शायद बीजेपी ने इतना इंस्टाग्राम में पहले पोस्ट नहीं किया है, पर एक जेंजी, एक नया इंडिया, वो लोग शायद ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं. आप ये मानते हैं कि आप लोगों का फोकस ज़्यादा इंस्टाग्राम में होना चाहिए? ट्विटर पे तो आप लोग माहिर हो, पर डू यू थिंक यू नीड टू डू मच मोर ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया फोरम्स?
3: बिल्कुल, हम लोग सभी जितने भी मीडियम से सोशल मीडिया में, उसमें हम लोग और एक्टिविटी बढ़ाएंगे. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे ग्रुप्स इम्पोर्टेंट, सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं.
2: और तो मतलब आपका फोकस, आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताइए. आई मीन, हाउ इज इट गोइंग टू बी अ रियल प्रायोरिटी फॉर द बीजेपी गोइंग फॉरवर्ड?
3: देखिए, इंस्टाग्राम तो हमारी प्रायोरिटी रहेगा ही, यूथ सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम में है, तो हर प्लेटफॉर्म्स के जो कंटेंट हैं, जो उसके ऑडियंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर प्लान करेंगे. अभी भी अच्छा प्लानिंग हो रहा है, उसको बेटर आइडियाज़ के साथ और फ्लोट करेंगे, ताकि हमारे जो स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम में ज़्यादातर यूथ जुड़ता है, तो उनके स्पेसिफिक कंटेंट हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे. फेसबुक के ऑडियंस थोड़े से अलग हैं, ट्विटर के ऑडियंस अलग हैं, तो वो सिलेक्टिव चीज़ें रहेंगी, और वैसे हम लोग कंटेंट बनाएंगे और उनको भेजने का है, ताकि जो सोशल मीडिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, उन तक बीजेपी की बातें पहुंच सके.
2: दीपक जी, सोशल मीडिया में तो काफ़ी चीज़ पॉजिटिव है, काफ़ी चीज़ नेगेटिव है. आजकल का ज़माना मीम का ज़माना है, बीजेपी के खिलाफ काफ़ी मीम्स हो चुके हैं. आप लोग भी मीम्स बनाते हैं अपने पॉलिटिकल राइवल्स को टारगेट करने के लिए, इलेक्शंस के टाइम, बाकी टाइम भी. तो आपके ख्याल से ये मैसेजिंग जो है मीम्स के थ्रू काफ़ी बढ़ चुका है, और ये आपका स्ट्रैटेजी में ये रहेगा?
3: देखिए, अभी जैसे जैसे स्थितियां बनेंगी, मेनली रील्स बहुत अच्छी चल रही हैं, लोग रील्स को बहुत देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंटेंट्स को रील्स के द्वारा नीचे तक पहुंचाने का भी एक आइडिया रहेगा. और मैंने कहा ना कि हर प्लेटफॉर्म सेम है ग्लोबली, लेकिन अलग अलग राज्यों के हिसाब से उन तक पहुँचाना, और किस तरह की रील्स बनेंगी, क्या कंटेंट को, सिमिलर कंटेंट्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों के हिसाब से हमारा बनाने का प्रयास होगा. मेरा सिर्फ कहना यह है कि प्लेटफॉर्म्स में जो ऑडियंस हैं, उनका हम फोकस करेंगे, उनके हिसाब से और स्टेट के हिसाब से, स्टेट स्पेसिफिक हिसाब से, उस मैसेज को अलग अलग रील से, अलग अलग पोस्ट के

0: माध्यम से नीचे पहुंचाने का प्रयास होगा। ये हमारा बेसिक और रॉ आइडिया है। अभी जब हम लोग दिल्ली में बैठेंगे पूरी टीम के साथ, तो इसमें और मंथन करेंगे और क्या क्या नए आइडियाज निकलते हैं उसके हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी, खासकर हमारा हमारे नितिन नवीन जी का निर्देश, पूरा सेंट्रल टीम का जो निर्देश रहेगा उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज को रिफाइन किया जाएगा।
1: दीपक जी, एक प्राइमरी कंसर्न है सोशल मीडिया पे ट्रोल आर्मीज, और ये ट्रोल आर्मीज कहाँ से आते हैं कभी कभी पता नहीं रहता है। ये एलिगेशन रह चुका है कि बीजेपी का भी ट्रोल आर्मीज है, ऑपोजिशन का भी ट्रोल आर्मीज है, विदेश से लोग जिनका कोई एजेंडा है शायद उनका भी कोई ट्रोल आर्मी है, और ये काफ़ी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जहाँ अनोनमस आइडेंटिटी, अनोनमस वो लेके जो भी कहना है कुछ भी बोल देते लोग, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। आप ये मानते हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक है और ऑथेंटिक कम्युनिकेशन को ब्लॉक करता है?
0: ये ऑथेंटिक कम्युनिकेशंस होना चाहिए। ट्रोल आर्मीज को लेके आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते रहते हैं, और मुझे लगता है कि ऑथेंटिक कंटेंट लोगों तक जाना चाहिए, लोगों तक सच्चाई जाना चाहिए।
1: और फॉरेन फोर्सेस, जैसे हमने देखा है चाइना से कभी कभी या तो पाकिस्तान से, ऑब सिंदूर के दौरान काफ़ी नेगेटिव मैसेजिंग आ रहा था, और ये फॉल्स मैसेजिंग था, एआई जेनरेट करके फॉल्स मैसेजिंग, फॉल्स अभी भी होता रहता है ये कभी कभी हमारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे डिप्लोमेट्स के खिलाफ। तो अब नए आईटी कानून भी आ चुके हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना कितना प्रायोरिटी होना चाहिए?
0: बिल्कुल प्रायोरिटी रहेगा। इस तरह के जो लोग रहते हैं या जहाँ से भी ये होता है, मैंने कहा फॉल्स पोस्टिंग और ट्रोल, इस तरह की जो चीज़ें होती है, हमारा आईटी का कानून भी बन गया है, हम इसकी पूरी मदद लेंगे और जो भी जानकारी हमको मिलेगी निश्चित रूप से उसको रिपोर्ट किया जाएगा।
1: और ये ज़रा विस्तार से बताइए, आप जेंजी को टारगेट करने के लिए आपने कुछ तो बताया था और भी बताया, आई एम आस्किंग यू फॉर मोर डिटेल, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट हाउ आर यू गोइंग टू टारगेट जेंजी? जेंजी इज़ वेरी बिग, दे हैव 1 मिलियन डिफरेंट इंटरेस्ट्स, और बियॉन्ड पॉलिटिक्स हाउ आर यू गोइंग टू इंगेज जेंजी?
0: देखिए, जेंजीज आर ऑलरेडी एंगेज्ड, वो सोशल मीडिया में एंगेज्ड हैं। उन तक मैंने आपको बहुत ब्रॉडली बताया कि हम अच्छा कंटेंट भेजेंगे, ट्रू कंटेंट भेजेंगे। जो फॉल्स चीज़ों को डाल के जो भ्रम फैला रहे हैं जो लोग, उनको काउंटर करना, सही जानकारियां जेंजीज तक पहुंचे, उसकी मीडियम्स अलग से हो सकते हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा बातें कैसे पहुंचे, कैसे उनको इंगेज करें। एक अभी मैं जब दिल्ली पहुंचूंगा और मेरी नई टीम के साथ बैठूंगा, तो हम लोग एक बहुत स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, और मालवीय जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, उनकी भी जो मदद लेंगे, उनकी स्ट्रेटेजी को और कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकेगा, वो सारी चीज़ों का मंथन होगा और एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग इस काम पे जुटेंगे।
1: दीपक जी, जस्ट वन और टू मोर क्वेश्चंस। हमारे नए आईटी रेगुलेशंस हैं, और इसके तहत अगर कोई पोस्ट नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है उसको, उन इन पोस्ट को पुल डाउन किया जा सकता है, और इसमें काफ़ी लीगल केसेस भी हो चुका है ट्विटर के खिलाफ, फेसबुक के खिलाफ इत्यादि, पर इसमें एक ट्रांसपेरेंसी का भी बात है। हु इज आस्किंग फॉर पोस्ट्स टू बी टेकिंग डाउन? शुड एन एक्सप्लेनेशन नॉट बी गिवन ऑन वाई अ पोस्ट हैज बीन टेकन डाउन? इसमें आपको, आपका राय क्या है इसमें?
0: देखिए, मेरा राय यह है कि अगर देश विरोधी कोई भी पोस्ट हो रही है और उसकी रिपोर्ट होना चाहिए, और जो आईटी लॉज हैं उसके आगे उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई होना चाहिए।
1: पर दीपक जी, ये सिर्फ देश विरोधी पोस्ट्स नहीं है, ये पॉलिटिकली पॉलिटिकल पोस्ट भी हो सकता है जो जो जिससे आप डिसएग्री करते हैं, और आरोप ये है कि सेवरल गवर्नमेंट्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लॉ टू फोर्स सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स टू टेक डाउन पोस्ट, और ये नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इस पर आपका राय क्या है?
0: कि मैंने आपको ये भी कहा ना भी कि इस तरह की अगर कोई पोस्ट आती है जो नहीं होना चाहिए, जो इलीगल है हमारे लॉज के हिसाब से, इट शुड बी रिपोर्टेड और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। देश हित में है, पॉलिटिकली रॉन्ग है, अगर वो गलत है तो गलत है। अगर आईटी नियमों के हिसाब से अगर वो गलत है तो इट्स रॉन्ग, इट शुड बी रिपोर्टेड, और जो लॉ कहता है उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई होना चाहिए।
1: एंड अ फाइनल क्वेश्चन टू यू, यू आर अ नॉन दिल्ली नॉन मेट्रो फेस, द बीजेपी इज नाउ गॉट अ कंप्लीटली न्यू टॉप लीडरशिप, यू नो, वर्किंग विथ योर बीजेपी प्रेजिडेंट, इज दिस अ डिलिबरेट स्ट्रैटेजी टू ब्रिंग समबडी हु इज अ नॉन मेट्रो फेस टू हेड you know, the IT or the digital, be the digital face.

0: ground reality and brands TVK a real government. The Karnataka Chief Minister DK Shivkumar will meet the Tamil Nadu Chief Minister Vijay in Chennai on Thursday. This meeting comes amid the shooting of alleged poachers and the Kaveri water dispute. Air India continues to screen all its pilots for drugs. Two more pilots test positive in preliminary tests. Both have been de-rostered pending final results. Well, there's good news for students in Jharkhand as the Hemant Soren government has finally agreed to their demand and have cancelled the JSSC CGL exam. The decision comes after days of protests and mounting pressure from students demanding action over the examination process. Announcing the cabinet decision, the chief minister said that a comprehensive inquiry will be conducted into all errors, minor or major, that have occurred since 2014, and that all exams linked to the TDPL, including the JSSC, will be cancelled. Hailing the government, Devendranath Mahato, who's been on a hunger strike since the 2nd of August, said that he's satisfied by the government-led probe and is grateful to students for their support and to the government for accepting the demands of students.
1: आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की. इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है. इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं. इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है. जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है. हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है. अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए.
0: Well, joining us now, a very special guest. I'm joined by Devendranath Mahato, the student leader and youth activist. Devendra, shukriya, aap hamare saath jud rahe hain is waqt. Aapka ye ladai, aapka ye jang, jo kaafi hafton ke liye chala hai, shayad ye ab samapt hone wala hai, ya to samapt ho chuka hai. Aapke sab demands ko manzoor, ko accept kiya gaya hai. Aap log CBI demand bhi, CBI probe bhi mang rahe the. Filhal, uske baare mein kuch bataya nahi gaya hai.
2: Ye सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि छात्र का संघर्ष बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत हद तक माने हैं. उस पर भले कही नहीं गई है, लेकिन बाकी जितना भी डिमांड था वो सारे डिमांड पूरी कर ली गई है. और इसके लिए विशेष रूप से आपके चैनल के पूरे टीम को और जितने भी सहयोग के छात्र, अभिभावक, सम्मान्य शिक्षक, समाजसेवी, प्रशासन के टीम, डॉक्टर्स के टीम, सफाई कर्मी, सबको हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं. वैसे उनको भी धन्यवाद जो बिलिंगकिस के माध्यम से और जोमेटो के माध्यम से हम लोग को अजनबी बनकर पानी पहुंचाया, नाश्ता पहुंचाया, सबको धन्यवाद. लेकिन हमारा

0: संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम की गारंटी नहीं मिलती है कि आगे भविष्य में कभी भी पेपर लीक ना हो। अगर हो तो उसको पकड़ा जाए और उसको कड़ी कार्रवाई हो, आजीवन कारावास हो, तभी जाकर के हम लोग का छात्र को न्याय मिलेगा। क्योंकि मैं अपने जीवन में कई एग्जाम को रद्द होते हुए देखा है, कई एग्जाम पर सीबीआई जांच देखा है, कई एग्जाम पर सीआईडी जांच देखा है। आज हम बात करते हैं इस सीबीएल एग्जाम रद्द की, वो एग्जाम को मैं 29 जनवरी 2024 को भी रद्द कराया था। दोबारा एग्जाम हुई, दोबारा पेपर लीक हुआ, धांधली हुई, तो जांच और रद्द सॉल्यूशन नहीं है।
1: देवेंद्र एक चीज बताइए, आपका एक प्राइमरी कंसर्न ये थर्ड पार्टी कंडक्टिंग एजेंसीज था, TDPL जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी था, उसके खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके अलावा अब क्या होना चाहिए? अगर आप एग्जाम क्लीनअप चाहते तो एक ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए?
0: देखिए, एक ऐसा कानून लाए या एक ऐसा निगरानी कमेटी बनाए जो हर एग्जाम का हर स्टेज पर ऑडिट हो, उसका रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। भाई मान के चलिए पीटी एग्जाम हुआ, उसका क्या एसओपी का पालन हुई, क्या नियमावली का पालन हुआ, मेंस पर क्या हुआ, इंटरव्यू लाइव हो, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड हो, पारदर्शिता सबका जवाबदेही हो। उसको अभी क्या होता है कि संवैधानिक संस्था को कोई निगरानी नहीं कर सकता, इस हवाला देते हुए खूब धांधली हो रहा है। अगर निगरानी के लिए अभी मान क्वेश्चन ही सेट करना है, कई स्टेप पर सेट होते हैं, लेकिन हर स्टेज का एक ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए कि भाई वो क्या किया, कितना पारदर्शिता किया। फिर अगला स्टेप पर होगा तो पहला स्टेप वाला को मालूम नहीं होना चाहिए। इस तरीके का एक प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि हमने ये सब नियम का, सब शर्त का, पूरा एसओपी का, नियमावली का हमने पालन किया है। इस तरीके से पारदर्शिता सुनिश्चित हो, इसके लिए विधानसभा में कानून बनाने की आवश्यकता है तो बनाया जाए, संविधान को संशोधन करने की आवश्यकता है तो वो भी किया जाए। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि मेरा जैसा कुर्बानी और आने वाले भविष्य में कोई दूसरे बच्चों को देना पड़े।
1: नहीं नहीं, एकदम सही बात कह रहे हैं देवेंद्र, और ये किसी भी हमारे किसी भी स्टेट में किसी भी एग्जाम में ये नहीं होना चाहिए। आपने एक बड़ा जीत जीता है आज, और बधाई हो इसके लिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू NDTV। शुक्रिया, थैंक यू। Well, the BJP has now unveiled its new national team with key appointments across the organization, including several prominent leaders, women, youth, and a strong representation from Uttar Pradesh ahead of the elections. Smriti Irani is back as the General Secretary. Ram Madhav has also been roped in, and Vasundhara Raje as Vice Presidents, and Vinod Tawde as General Secretary of the organization. Piyush Goyal gets the post of Treasurer, while the former Aam Aadmi Party leader Sandeep Pathak has been appointed National Secretary. Continuing with women leaders in Nitin Naveen's new team, the BJP has several prominent faces across key organizational posts, including Smriti Irani, Vasundhara Raje, and D. Purandeshwari. The Uttar Pradesh focus, as far as the UP focus is concerned, the BJP has given the state several key organizational posts, including General Secretary, Vice Presidents, National Secretaries, and both OBC and minority Morcha leaders. There's also a mix of youth and experience, with the BJP having retained Vinod Tawde and Sunil Bansal as General Secretaries. Three former chief ministers also feature prominently in this new team.
2: मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है, और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं, और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी, और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद, और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी।
3: देखिए, निश्चित ही बहुत बड़ी जवाबदारी है, और गर्व भी महसूस होता है, एक सामान्य से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर की जवाबदारी दी गई है। मैं प्रदेश के संगठन को, राष्ट्रीय संगठन को, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय मोदी जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का और कार्यकर्ता भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ, और इस जिम्मेदारी पे प्राण प्राण से जुटकर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।
1: Well, among the big changes which have taken place in the BJP, they've got a new social media head, Deepak Maske replaces Amit

0: से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब।
1: अगर प्रधानमंत्री जी जरा सी नजरें झुका के देख लें तो अपने इर्द गिर्द अपने चारों तरफ वही मिलेंगे जो संविधान को नहीं मानते, वही मिलेंगे जो देश के अंदर नफरत बांटते हैं, वहीं वही मिलेंगे जो धर्म देख करके लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वही मिलेंगे जो दूसरों के धार्मिक स्थलों को तोड़ने का काम करते हैं, वही सब लोग मिलेंगे जो जाति देख करके उनकी बारात नहीं निकलने देते, वही सब लोग मिलेंगे जो आदिवासियों को उजाड़ने के अंदर विश्वास रखते हैं, सब लोग प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द आपको मिल जाएंगे।
2: Well, the Vijay government has now completed its first 100 days in Tamil Nadu, with the Chief Minister highlighting a series of initiatives and investment commitments. The government says Tamil Nadu secured 67,542 crores in investments during the first 100 days, while also announcing a 1 lakh crore investment conclave. Among the achievements listed are the closure of 717 liquor shops, a women's safety task force, anti-narcotics measures, skill training for 12 lakh people, and expanded welfare schemes. Meanwhile, the Tamil Nadu leader of opposition, Udayanidhi Stalin, said that the ground reality is different than what the chief minister has listed as achievements. Not only the DMK, but the AIADMK and the BJP have also taken jibes at the chief minister, Vijay, and called his 100 days, 100 days of real government.
3: Ninna kaidu, nadanda kaidu, pesana kaidu, social media la or post pota kaidu abrinne, or mosamana fascist arasaga indrik inda arasangam selpattu varugirathu. Andha alavukku inda arasukku இன்செக்யூரிட்டி ரொம்ப அதிகம். இன்னைக்கு தூங்கி எந்திரிச்சா யாரை கைது பண்ணலான்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு ஷெட்யூல் போட்டு இன்னைக்கு இந்த அரசு கைது நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருது.
4: 100 டேஸ் ஆஃப் கிண்டர் கார்டன்ஸ், நாட் ஷுர் வென் தேர் கோயிங் டு கிராஜுவேட் டு தி ஸ்கூல் லெவல்ஸ், ஹை ஸ்கூல் லெவல்ஸ் அண்ட் டெலிவர் ஃபார் தி வெல்ஃபேர் ஆஃப் பீப்புள் ஆஃப் தமிழ்நாடு. அண்ட் மிஸ்டர் விஜய் இஸ் தி நம்பர் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் இன் தி கிண்டர் கார்டன், என்டர்டெய்னிங் ஆல்.
2: All right, well, we are joined now by a very special guest. He'll join us in a few moments from now, Deepak Maske. He heads the BJP's IT cell. Thank you very much, Deepak ji, for being with us. A huge responsibility. You're replacing Amit Malviya in this very big role. I'm just curious to know, how important is it for the BJP, with elections coming up, to spread the message, not only of the government, but of the party? How is social media essential for communications more than ever before?
5: देखिए, दो बातों का जवाब मैंने दूंगा कि एक आपने कहा कि I am replacing अमित मालवी. हमारी पार्टी में हम किसी को रिप्लेस नहीं करते हैं, हमको अलग अलग दायित्व मिलता है
2: जी.
5: उन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक संभाला था और पार्टी ने अब मुझे दायित्व दिया है. और एक तो ये विषय था, दूसरा सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, करता रहा है और आने वाले समय में और भी करेगा. हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो अच्छा कंटेंट है, जो ट्रू कंटेंट है, उसको अलग अलग मीडियम से लोगों तक पहुंचाना. अलग अलग राज्यों की तासीर अलग अलग होती है, तो आइडियाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एम ये रहेगा कि सरकार की उपलब्धियां, और अगर विदेशी पार्टियां अगर कुछ भ्रम फैला रही हैं, झूठ फैला रही हैं, तो उसको ट्रू कंटेंट के साथ लोगों तक पहुँचाना.
2: दीपक जी, आप हमने कुछ दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पोस्ट कर रहे थे. शायद बीजेपी ने इतना इंस्टाग्राम में पहले पोस्ट नहीं किया है, पर एक जेंजी, एक नया इंडिया, वो लोग शायद ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं. आप ये मानते हैं कि आप लोगों का फोकस ज़्यादा इंस्टाग्राम में होना चाहिए? ट्विटर पर तो आप लोग माहिर हो, पर डू यू थिंक यू नीड टू डू मच मोर ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया फोरम्स?
5: बिल्कुल, हम लोग सभी जितने भी मीडियम से सोशल मीडिया में, उसमें हम लोग और एक्टिविटी बढ़ाएंगे. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे ग्रुप्स इम्पोर्टेंट, सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं.
2: और तो मतलब आपका फोकस, आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताइए. आई मीन, हाउ इज इट गोइंग टू बी अ रियल प्रायोरिटी फॉर द बीजेपी गोइंग फॉरवर्ड?
5: देखिए, इंस्टाग्राम तो हमारी प्रायोरिटी रहेगा ही, यूथ सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम में है, तो हर प्लेटफॉर्म्स के जो कंटेंट हैं, जो उसके ऑडियंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर प्लान करेंगे. अभी भी अच्छा प्लानिंग हो रहा है, उसको बेटर आइडियाज़ के साथ और फ्लोट करेंगे, ताकि हमारे जो स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम में ज़्यादातर यूथ जुड़ता है, तो उनके स्पेसिफिक कंटेंट हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे। फेसबुक के ऑडियंस थोड़े से अलग हैं, ट्विटर के ऑडियंस अलग हैं, तो वो सिलेक्टिव चीज़ें रहेंगी और वैसे हम लोग कंटेंट बनाएंगे और उनको भेजने का है, ताकि जो सोशल मीडिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उन तक बीजेपी की बातें पहुँच सके।
2: दीपक जी, सोशल मीडिया में तो काफ़ी चीज़ पॉजिटिव है, काफ़ी चीज़ नेगेटिव है। आजकल का ज़माना मीम का ज़माना है, बीजेपी के खिलाफ काफ़ी मीम्स हो चुके हैं। आप लोग भी मीम्स बनाते हैं अपने पॉलिटिकल राइवल्स को टारगेट करने के लिए इलेक्शंस के टाइम, बाकी टाइम भी। तो आपके ख्याल से
6: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स, Voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary, conversations that connect countries and cultures, where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. A new Nepal. New possibilities, a new opportunity.
2: A fresh political face-off has erupted between Tamil Nadu and Karnataka over the killing of three alleged Tamil Nadu poachers in a forest in Karnataka. The three Tamil Nadu residents were killed in an encounter with Karnataka forest officials, triggering a sharp response from the Tamil Nadu Chief Minister, Mr. Vijay, who has now questioned the circumstances surrounding the killings, calling the Karnataka Forest Department's explanation unacceptable and demanding greater clarity on this encounter. But Karnataka has rejected these allegations, maintaining that the encounter was lawful and pointing out that a judicial inquiry into the incident is already underway. The political row has now intensified, with the DMK backing Vijay's stand and demanding a CBI inquiry into the killings. So is this a genuine demand for accountability? Or is the poacher encounter becoming the latest flashpoint in the Tamil Nadu Karnataka political row?
7: There is already an judicial inquiry that is happening, and I'm not sure if the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu is aware of the facts of the case. So I'm sure if he's aware, he might change his stand on that. But whatever it is, it's a matter pertaining to Karnataka, and I would request anybody else to refrain from commenting on that without knowing the facts.
8: Definitely, it is a wrongful doing. How can the Karnataka forest officials kill three people when they are not involved in any kind of poaching or something? They were taking rest. But they being Tamil, the Karnataka Forest Department had killed them. There should be a severe punishment for those people. Officials, the central government should intervene, their agencies, CBI should investigate and book them and put them in jail.
2: Well, it's time now for us to take a short break. There's a lot more coming up.
6: New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster, bolder, more restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV, when it really matters. A world of questions. Ideas that challenge the ordinary, conversations that connect countries and cultures, where different worlds find common ground. NDTV World brings Nepal's ideas to the world. NDTV Anviksha, Ideas Across Borders, The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. A new Nepal. new possibilities.

0: Good evening. It's later on Monday evening. We've got a lot of headlines coming up. Take a look. After weeks of intense student-led demonstrations across Jharkhand, the Soren-led government has accepted the primary demands of protesting aspirants. The JSSC-CGL examination is now cancelled. Students remain adamant on a CBI probe. That's not happened so far. The BJP announces a new national team under Nitin Nabin. Smriti Irani and Ram Madhav make a big comeback. A big Nadi Shakti and youth push with an eye on the UP election 2027. A huge showdown over the Prime Minister's Dimagi Naxal remark. The Congress goes after the Prime Minister and asks, how can people of this country be Dimagi Naxals? The BJP hits back and says the Prime Minister's remarks have forced Dimagi Naxals to come out in 24 hours. The Vijay government completes 100 days in power. The TVK lists out achievements of his government. The leader of the opposition, Uday Nidhi, says that the claims don't match the ground reality and brands TVK a real government. The Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar will meet the Tamil Nadu Chief Minister Vijay in Chennai on Thursday. This meeting comes amid the shooting of alleged poachers and the Kaveri water dispute. Air India continues to screen all its pilots for drugs. Two more pilots test positive and preliminary tests. Both have been de-rostered pending final results. Well, there's good news for students in Jharkhand as the Hemant Soren government has finally agreed to their demand and have cancelled the JSSC-CGL exam. The decision comes after days of protests and mounting pressure from students demanding action over the examination process. Announcing the cabinet decision, the chief minister said that a comprehensive inquiry will be conducted into all errors, minor or major, that have occurred since 2014, and that all exams linked to the TDPL, including the JSSC, will be cancelled. Hailing the government, Devendranath Mahato, who's been on a hunger strike since the 2nd of August, said that he's satisfied by the government-led probe and is grateful to students for their support and to the government for accepting the demands of students.
1: आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की. इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां या यहां हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है. इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं. इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है. जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है. हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है. अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए.
0: Well, joining us now, a very special guest. I'm joined by Devendranath Mahato, the student leader and youth activist. Devendra, shukriya, aap hamare saath jud rahe hain is waqt. Aapka ye ladai, aapka ye jang, jo kaafi hafton ke liye chala hai, shayad ye ab samapt hone wala hai, ya to samapt ho chuka hai. Aapke sab demands को मंजूर को एक्सेप्ट किया गया है? आप लोग सीबीआई डिमांड भी सीबीआई प्रोब भी मांग रहे थे, फिलहाल उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है।
2: ये सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि छात्र का संघर्ष बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत हद तक माने हैं, उस पर भले कही नहीं गई है, लेकिन बाकी जितना भी डिमांड था वो सारे डिमांड पूरी कर ली गई है। और इसके लिए विशेष रूप से आपके चैनल के पूरे टीम को और जितने भी सहयोग के छात्र, अभिभावक, सम्मान्य शिक्षक, समाजसेवी, प्रशासन के टीम, डॉक्टर्स के टीम, सफाई कर्मी, सबको हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वैसे उनको भी धन्यवाद जो बिलिंगकिट के माध्यम से और जोमेटो के माध्यम से हम लोग को अजनबी बनकर पानी पहुंचाया, नाश्ता पहुंचाया, सबको धन्यवाद। लेकिन हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम की गारंटी नहीं मिलती है कि आगे भविष्य में कभी भी पेपर लीक ना हो। अगर हो तो उसको पकड़ा जाए और उसको कड़ी कार्रवाई हो, आजीवन कारावास हो, तभी जाकर के हम लोग का छात्र को न्याय मिलेगा। क्योंकि मैं अपने जीवन में कई एग्जाम को रद्द होते हुए देखा है, कई एग्जाम पर सीबीआई जांच देखा है, कई एग्जाम पर सीआईडी जांच देखा है। आज हम बात करते हैं इस सीबीएल एग्जाम रद्द की, वो एग्जाम को मैं 29 जनवरी 2024 को भी रद्द कराया था, दोबारा एग्जाम हुई, दोबारा पेपर लीक हुआ, धांधली हुई। तो जांच और रद्द सॉल्यूशन नहीं है, ये छात्रों के साथ न्याय नहीं है।
0: देवेंद्र एक चीज बताइए, आपका एक प्राइमरी कंसर्न ये थर्ड पार्टी कंडक्टिंग एजेंसीज था, TDPL जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी था, उसके खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके अलावा अब क्या होना चाहिए? अगर आप एग्जाम क्लीनअप चाहते तो एक अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए?
2: देखिए, एक

0: ऐसा कानून लाए या एक ऐसा निगरानी कमेटी बनाए जो हर एग्जाम का हर स्टेज पर ऑडिट हो, उसका रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए भाई। मान के चलिए पीटी एग्जाम हुआ, उसका क्या एसओपी का पालन हुई, क्या नियमावली का पालन हुआ, मेंस पर क्या हुआ, इंटरव्यू लाइव हो, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड हो, पारदर्शिता सबका जवाबदेही हो उसको। अभी क्या होता है कि संवैधानिक संस्था को कोई निगरानी नहीं कर सकता, ये हवाला देते हुए खूब धांधली हो रहा है। अगर निगरानी के लिए अभी मान क्वेश्चन ही सेट करना है, कई स्टेप पर सेट होते हैं, लेकिन हर स्टेज का एक ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए कि भाई वो क्या किया, कितना पारदर्शिता किया। फिर अगला स्टेप पर होगा तो पहला स्टेप वाला को मालूम नहीं होना चाहिए। इस तरीके का एक प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि हमने ये सब नियम का, सब शर्त का, पूरा एसओपी का, नियमावली का हमने पालन किया है। इस तरीके से पारदर्शिता सुनिश्चित हो, इसके लिए विधानसभा में कानून बनाने की आवश्यकता है तो बनाया जाए, संविधान को संशोधन करने की आवश्यकता है तो वो भी किया जाए। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि मेरा जैसा कुर्बानी और आने वाले भविष्य में कोई दूसरे बच्चों को देना पड़े।
1: नहीं नहीं, एकदम सही बात कह रहे हैं देवेंद्र, और ये किसी भी हमारे किसी भी स्टेट में किसी भी एग्जाम में ये नहीं होना चाहिए। आपने एक बड़ा जीत जीता है आज, और बधाई हो इसके लिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी। शुक्रिया, थैंक यू। Well, the BJP has now unveiled its new national team with key appointments across the organization, including several prominent leaders, women, youth, and a strong representation from Uttar Pradesh ahead of the elections. Smriti Irani is back as the General Secretary. Ram Madhav has also been roped in, and Vasundhara Raje as Vice Presidents, and Vinod Tawde as General Secretary of the organization. Piyush Goyal gets the post of Treasurer, while the former Aam Aadmi Party leader Sandeep Pathak has been appointed National Secretary. Continuing with women leaders in Nitin Naveen's new team, the BJP has several prominent faces across key organizational posts, including Smriti Irani, Vasundhara Raje, and D. Purandeshwari. The Uttar Pradesh focus, as far as the UP focus is concerned, the BJP has given the state several key organizational posts, including General Secretary, Vice Presidents, National Secretaries, and both OBC and Minority Morcha leaders. There's also a mix of youth and experience, with the BJP having retained Vinod Tawde and Sunil Bansal as General Secretaries. Three former Chief Ministers also feature prominently in this new team.
2: मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है, और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं, और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी, और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद, और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी।
3: देखिए, निश्चित ही बहुत बड़ी जवाबदारी है, और गर्व भी महसूस होता है। एक सामान्य से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर की जवाबदारी दी गई है। मैं प्रदेश के संगठन को, राष्ट्रीय संगठन को, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय मोदी जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का और कार्यकर्ता भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ, और इस जिम्मेदारी पे प्राण प्राण से जुटकर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।
1: All right, well, we are joined now by a very special guest. He'll join us in a few moments from now, Deepak Maske. He heads the BJP's IT cell. Thank you very much, Deepak ji, for being with us. A huge responsibility. You're replacing Amit Malviya in this very big role. I'm just curious to know, how important is it for the BJP, with elections coming up, to spread the message, not only of the government, but of the party? How is social media essential for communications more than ever before?
4: देखिए, दो बातों का जवाब मैंने दूंगा कि एक आपने कहा कि आई एम रिप्लेसिंग अमित मालवी। हमारी पार्टी में हम किसी को रिप्लेस नहीं करते हैं, हमको अलग अलग दायित्व मिलता है
1: जी।
4: उन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक संभाला था, और पार्टी ने अब मुझे दायित्व दिया है, और एक तो ये विषय था। दूसरा, सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, करता रहा है, और आने वाले समय में और भी करेगा। हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो अच्छा कंटेंट है, जो ट्रू कंटेंट है, उसको अलग अलग मीडियम से लोगों तक पहुंचाना। अलग अलग राज्यों की तासीर अलग अलग होती है, तो आइडियाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एम ये रहेगा कि सरकार की उपलब्धियां, और अगर विदेशी पार्टियां अगर कुछ भ्रम फैला रही हैं, झूठ फैला रही हैं, तो उसको ट्रू कंटेंट के साथ लोगों तक पहुंचाना।
1: दीपक जी, अब हमने कुछ दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पोस्ट कर रहे थे। शायद बीजेपी ने इतना इंस्टाग्राम में पहले पोस्ट नहीं किया है, पर एक जेंजी, एक नया इंडिया, वो लोग शायद ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं। आप ये मानते हैं कि आप लोगों का फोकस ज़्यादा इंस्टाग्राम में होना चाहिए? ट्विटर पे तो आप लोग माहिर हो, पर डू यू थिंक यू नीड टू डू मच मोर ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया फोरम्स?
4: बिल्कुल, हम लोग सभी जितने भी मीडियम से सोशल मीडिया में, उसमें हम लोग और एक्टिविटी बढ़ाएंगे। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे ग्रुप्स इम्पोर्टेंट, सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं।
1: और तो मतलब आपका फोकस, आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताइए। आई मीन, हाउ इज इट गोइंग टू बी अ रियल प्रायोरिटी फॉर द बीजेपी गोइंग फॉरवर्ड?
4: देखिए, इंस्टाग्राम तो हमारी प्रायोरिटी रहेगा ही, यूथ सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम में है, तो हर प्लेटफॉर्म्स के जो कंटेंट हैं, जो उसके ऑडियंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर प्लान करेंगे। अभी भी अच्छा प्लानिंग हो रहा है, उसको बेटर आइडियाज़ के साथ और फ्लोट करेंगे, ताकि हमारे जो स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम में ज़्यादातर यूथ जुड़ता है, तो उनके स्पेसिफिक कंटेंट हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे। फेसबुक के ऑडियंस थोड़े से अलग हैं, ट्विटर के ऑडियंस अलग हैं, तो वो सिलेक्टिव चीज़ें रहेंगी, और वैसे हम लोग कंटेंट बनाएंगे और उनको भेजने का है, ताकि जो सोशल मीडिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, उन तक बीजेपी की बातें पहुंच सके।
1: दीपक जी, सोशल मीडिया में तो काफ़ी चीज़ पॉजिटिव है, काफ़ी चीज़ नेगेटिव है। आजकल का ज़माना मीम का ज़माना है, बीजेपी के खिलाफ काफ़ी मीम्स हो चुके हैं। आप लोग भी मीम्स बनाते हैं अपने पॉलिटिकल राइवल्स को टारगेट करने के लिए इलेक्शंस के टाइम, बाकी टाइम भी। तो आपके ख्याल से ये मैसेजिंग जो है मीम्स के थ्रू काफ़ी बढ़ चुका है, और ये आपका स्ट्रैटेजी में ये रहेगा?
4: देखिए, अभी जैसे जैसे स्थितियां बनेंगी, मेनली रील्स बहुत अच्छी चल रही हैं, लोग रील्स को बहुत देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंटेंट्स को रील्स के द्वारा नीचे तक पहुंचाने का भी एक आइडिया रहेगा। और मैंने कहा ना कि हर प्लेटफॉर्म सेम है ग्लोबली, लेकिन अलग अलग राज्यों के हिसाब से उन तक पहुँचाना, और किस तरह की रील्स बनेंगी, क्या कंटेंट को, सिमिलर कंटेंट्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों के हिसाब से हमारा बनाने का प्रयास होगा। मेरा सिर्फ कहना ये है कि प्लेटफॉर्म्स में जो ऑडियंस हैं उनका हम फोकस करेंगे, उनके हिसाब से और स्टेट के हिसाब से, स्टेट स्पेसिफिक हिसाब से, उस मैसेज को अलग अलग रील से अलग अलग पोस्ट के माध्यम से नीचे पहुँचाने का प्रयास होगा। ये हमारा बेसिक और रॉ आइडिया है। अभी जब हम लोग दिल्ली में बैठेंगे पूरी टीम के साथ, तो इसमें और मंथन करेंगे, और क्या क्या नए आइडियाज निकलते हैं उसके हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी, खासकर हमारा हमारे नितिन नवीन जी का निर्देश, पूरा सेंट्रल टीम का जो निर्देश रहेगा, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज को रिफाइन किया जाएगा।
1: दीपक जी, एक प्राइमरी कंसर्न है सोशल मीडिया पे ट्रोल आर्मीज, और ये ट्रोल आर्मीज कहाँ से आते कभी कभी पता नहीं रहता है। ये एलिगेशन रह चुका है कि बीजेपी का भी ट्रोल आर्मीज है, ऑपोजिशन का भी ट्रोल आर्मीज है, विदेश से लोग जिनका कोई एजेंडा है शायद उनका भी कोई ट्रोल आर्मी है, और ये काफ़ी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, जहाँ अनोनमस आइडेंटिटी, अनोनमस वो लेके जो भी कहना है कुछ भी बोल देते लोग, तो ये प्रॉब्लमैटिक है। आप ये मानते हैं कि ये प्रॉब्लमैटिक है और ऑथेंटिक कम्युनिकेशन को ब्लॉक करता है?
4: ऑथेंटिक कम्युनिकेशन होना चाहिए। ट्रोल आर्मीज को लेके आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते रहते हैं, और मुझे लगता है कि ऑथेंटिक कंटेंट लोगों तक जाना चाहिए, लोगों तक सच्चाई जाना चाहिए।
1: और फॉरेन फोर्सेस, जैसे हमने देखा है चाइना से कभी कभी, या तो पाकिस्तान से, ऑब सिंदूर के दौरान काफी नेगेटिव मैसेजिंग आ रहा था, और ये फॉल्स मैसेजिंग था, AI जेनरेट करके फॉल्स मैसेजिंग, फॉल्स अभी भी होता रहता है ये कभी कभी हमारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे डिप्लोमेट्स के खिलाफ। तो अब नए IT कानून भी आ चुके हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना कितना प्रायोरिटी होना चाहिए?
4: बिल्कुल प्रायोरिटी रहेगा। इस तरह के जो लोग रहते हैं या जहाँ से भी ये होता है, मैंने कहा फॉल्स पोस्टिंग और ट्रोल, इस तरह की जो चीज़ें होती है, हमारा IT का कानून भी बन गया है, हम इसकी पूरी मदद लेंगे, और जो भी जानकारी हमको मिलेगी निश्चित रूप से उसको रिपोर्ट किया जाएगा।
1: और ये ज़रा विस्तार से बताइए, आप जेंजी को टारगेट करने के लिए आपने कुछ तो बताया था और भी बताया, आई एम आस्किंग यू फॉर मोर डिटेल What are you going to do? How are you going to target Gen Z? Gen Z is very big. They have 1 million different interests. Beyond politics, how are you going to engage Gen Z?
4: देखिए, Gen Z's are already engaged. वो सोशल मीडिया में engaged हैं. उन तक मैंने आपको बहुत ब्रॉडली बताया कि हम अच्छा कंटेंट भेजेंगे, ट्रू कंटेंट भेजेंगे. जो फॉल्स चीज़ों को डाल के जो भ्रम फैला रहे हैं जो लोग, उनको काउंटर करना, सही जानकारियां Gen Z's तक पहुंचे. उसकी मीडियम से अलग हो सकते हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा बातें कैसे पहुंचे, कैसे उनको इंगेज करें. एक अभी मैं जब दिल्ली पहुंचूंगा और मेरी नई टीम के साथ बैठूंगा, तो हम एक बहुत स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, और मालवीय जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, उनकी भी जो मदद लेंगे, उनकी स्ट्रेटेजी को और कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकेगा, वो सारी चीज़ों का मंथन होगा और एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग इस काम पर जुटेंगे.
1: दीपक जी, जस्ट वन और टू मोर क्वेश्चंस. हमारे नए IT रेगुलेशंस हैं, और इसके तहत अगर कोई पोस्ट नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, उसको इन पोस्ट को पुल डाउन किया जा सकता है. इसमें काफ़ी लीगल केसेस भी हो चुका है, ट्विटर के खिलाफ, फेसबुक के खिलाफ इत्यादि. पर इसमें एक ट्रांसपेरेंसी का भी बात है. हु इज आस्किंग फॉर पोस्ट टू बी टेकन डाउन? शुड एन एक्सप्लेनेशन नॉट बी गिवन ऑन वाई अ पोस्ट हैज़ बिन टेकन डाउन? इसमें आपको, आपका राय क्या है इसमें?
4: देखिए, मेरा राय यह है कि अगर देश विरोधी कोई भी पोस्ट हो रही है और उसकी रिपोर्ट होना चाहिए, और जो IT लॉज हैं उसके उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई होना चाहिए.
1: पर दीपक जी, ये सिर्फ देश विरोधी पोस्ट्स नहीं है, ये पॉलिटिकल पोस्ट भी हो सकता है जो जिससे आप डिसएग्री करते हैं. और आरोप ये है कि सेवरल गवर्नमेंट्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लॉ टू फोर्स सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स टू टेक डाउन पोस्ट, और ये नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. इस पर आपका राय क्या है?
4: देखिए, मैंने आपको ये भी कहा ना भी कि इस तरह की अगर कोई पोस्ट आती है जो नहीं होना चाहिए, जो इलीगल है हमारे लॉज के हिसाब से, इट शुड बी रिपोर्टेड और उस पर कार्रवाई होना चाहिए. देश हित में है, पॉलिटिकली रॉन्ग है, अगर वो गलत है तो गलत है. अगर IT नियमों के हिसाब से अगर वो गलत है तो इट्स रॉन्ग, इट शुड बी रिपोर्टेड, और जो लॉ कहता है उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई होना चाहिए.
1: एंड अ फाइनल क्वेश्चन टू यू, यू आर अ नॉन दिल्ली, नॉन मेट्रो फेस. द BJP इज नाउ गॉट अ कंप्लीटली न्यू टॉप लीडरशिप, यू नो, वर्किंग विथ योर BJP प्रेसिडेंट. इज दिस अ डिलिबरेट स्ट्रैटेजी टू ब्रिंग समबडी हु इज अ नॉन मेट्रो फेस टू हेड, you know, the IT or the digital, be the digital face, as it were, of the party? Do you think that is part of the strategy?
4: It's not a strategy. What I think, BJP lagatar daitva badalti rehti hai, aur usi ka ye bhi ek hissa hai. Naye logo ko laya jata hai, aur unko us tarah se kaam aage badhta hai. Koi isko specific strategy ka roop dena theek nahi hai.
1: Deepak Maskey ji, thank you very much. You have an awesome responsibility. Let's hope that social media messaging is positive. We need that to be the case, and so many of the negative things go away. Thank you very much, sir. Thank you very much for being with NDTV.
5: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
6: Launch control, 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
8: This car makes no sense, yet it makes every sense.
9: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
10: Your friend said, ye le le. We said, maybe not.
11: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate,
12: your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
13: Across the country.
14: He has tracked the pulse of power from one.
1: Now, one of the other big changes was Smriti Irani. She's now General Secretary. She comes back into the fold. And we'll be looking ahead at women's issues and certainly the Uttar Pradesh elections. Well, last year she spoke to my colleague Shiv Arur, where she said that she's not quitting politics but taking a break. That evidently was true. She's back in the fold.
15: like life comes full circle.
16: Do you miss active politics? You know, politics
15: but
16: goes up and down.
15: But who says I'm not in active politics?
16: Are you still? Do
15: of
16: you still
15: course
16: consider
15: I am.

0: narrative because you found that others were overtaking the narrative, especially on social media, which is why you had to bring in Smriti Irani so that you have got good voices to put your point across.
1: No. See, I think Ashutosh, you know, for any party, in the world today, parties don't, you know, govern for 12 continuous years. So if we have governed for 12 continuous years, of course, there is need for infusion of fresh narrative. Mm. I think any party which plans to be in power for at least another 10 years would need that new narrative. And I think if we are transforming, if we are changing as per times, I like I said, there are reasons for Ashutosh to be really worried today. He was talking about Instagram. Forget Instagram. This BJP team, Deepak Maskey ji, has been working behind the scenes. You know, he's far more experienced than many, many in other parties. This BJP team is going to lead not just in Insta, but also in AI and data analytics and along with new technology.
0: Okay, very quickly, Ashutosh, respond. You have reason to be worried, says Tuin Sinha. Are you worried? Why should he worry? He doesn't have to fight against the BJP. The Congress and other parties have to fight. Why should Ashutosh worry?
2: As a journalist, I'm supposed to give my objective analysis of anything which has happened. See, it is something that I'm not here to belittle the contribution Amit Malviya has made. Yes, Amit Malviya had made a great contribution to the social media platforms and the social media narrative he's created. He had own mistakes and his own blemishes. I'm not discounting that. But let's also understand that even one of the greatest CEOs, the time comes when he is left he lacks fresh ideas. BJP at the moment when it is facing severe social pressures from the cockroaches and the youth, you need fresh ideas. You need fresh narratives. You need fresh styles. I was just amazed. The Prime Minister has made a statement about the Dimagi Naxals. And yesterday only, I got a full song. Just imagine the kind of speed you are faced with. BJP should have those kind of speed and those kind of ideas to compete with and to deal with the Gen Z.
0: Interesting. So is this team going to fight against the Dimagi Naxal? That's a very interesting idea that you have positioned. But aap hi bata dijiye Sameer ji ki kya hua Amit Malviya ka? Kyun itna unke upar discussion ho gaya hai? Kyun unko replace kar diya gaya?
3: मुझे लगता है कि अमित मालवीय को हटाने को लेकर जिस तरीके से लगातार आर्गूमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, बाकी जगह ये कहा जा रहा है कि भाई वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, मुझे लगता है कि लंबा टाइम अमित मालवीय को हो गया। तो 2014-15 से वो सोशल मीडिया को देख रहे थे। 11 साल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सोशल मीडिया को देखना एक कम बड़ी उपलब्धि नहीं होती, एक लंबा टेन्योर उनका रहा है। और एक समय के बाद आता है कि पार्टी को लगता है कि भाई अब नए लोगों को जिम्मेदारी जाए, नए लोगों को लेकर आया जाए। तो संगठन में भी वो भूमिका निभा रहे, बंगाल के वो सहप्रभारी रहे थे चुनाव के दौरान, पार्टी उनका कहीं और इस्तेमाल करेगी। अब हटा देने का मतलब यही नहीं होता कि नॉन परफॉर्मेंस रहे, इससे उनको हटा दिया, एक लंबा टेंडर उनका हो गया था। और जिसको लेकर आए, मुझे लगता है कि दीपक मस्के वो भी बहुत एक अच्छी चॉइस है छत्तीसगढ़ से, जिसे लेकर आए सोशल मीडिया के रूप में। और ऐसा ही नहीं कि अमित मालवीय को हटा के बाकी पूरी टीम रिटेन की, और सबने काफ़ी लोगों को चेंज किया गया। आप संजय मयूंग को देख सकते हैं कि जो मीडिया सह प्रभारी थे उनको वहाँ से हटा दिया गया है, बाकी और जगह भी चेंजेस हुए।
0: दीपक मस्के कौन है, मतलब क्या उनको सोशल मीडिया का इतना एक्सपीरियंस है, नेशनल मीडिया का, नेशनल सोशल मीडिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने काम किया है इलेक्शन कैंपेन में। को बताया था किसी ने कि जब यहाँ पे जब भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी लड़ रही थी और उनकी गवर्नमेंट चेंज होने वाली थी, तब इस वक्त उन्होंने उनका ऑनलाइन कैंपेन देखा था। बट क्या नेशनल जो नैरेटिव है उसको शेप करने में उनको एक्सपीरियंस है?
3: निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था, उस समय नितिन नवीन वहाँ के इंचार्ज थे संगठन के, जब चुनाव देख रहे, चुनाव प्रभारी के रूप में। उस समय उन्होंने जो फीडबैक दिया गया छत्तीसगढ़ को लेकर, और उसके बाद में इलेक्शन के बाद में उन्होंने पूरा एक नेशनल लेवल पर उन्होंने एक मतलब प्रेजेंटेशन दिया था कि सोशल मीडिया किस तरीके से जाना चाहिए, मतलब नैरेटिव को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर। तो मुझे लगता है कि वो बहुत पसंद आया था। और फिर वो अमित शाह जी को उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, तो अमित शाह जी ने उसे बहुत पसंद किया था। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बताया होगा कि भाई सोशल मीडिया में हम कहाँ वीक हो रहे हैं, हमें कैसे इंप्रूव करना चाहिए, और अपोजिशन पार्टी का जो नैरेटिव है उसे कैसे हम ध्वस्त कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो मुझे लगता है कि वो पार्टी को पसंद आया होगा, और पार्टी को लगा होगा कि दीपक मस्के की इसमें पार्टी बेहतर सोशल मीडिया पे करेगी, तो उन्हें जिम्मेदारी दी और पूरी नई टीम लेकर आया, उसके अंदर काफी लोगों को शामिल किया है।
0: ओके, एंड व्हेन द नेशनल नैरेटिव हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड, पीपल लाइक स्मृति ईरानी आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट डू यू थिंक that this is also in a way a message, Shantanu Gupta, to Rahul Gandhi? Because at the end of the day, yes, Smriti Irani may have lost Amethi, but the fact is she has always not shied away from taking on Rahul Gandhi. And when he is the primary face of the opposition, then you need Smriti Irani there in the arena.
4: I think you're right. She's a giant killer. In 2019, she has beaten the the Yuvraj of Congress.

0: I think that's being her forte, and she has been active regularly. She goes to multiple elections. She speaks multiple languages. When she spoke in parliament, everyone listens. So I think she is still there, right? So her inclusion, it's not only, I'll not call her inclusion in the quote, just a woman quota inclusion. She has a politician of her own right, and she's super young, and she's super popular because of TV appearances. And in this short time, she also done some TV stint also, when she was away from the government. I think she's a very welcome entry into the government, and I'm sure. And she has worked in the organization before. She's worked for multiple elections. So I think that's a very welcome move, I think, which everyone was
1: And
0: expecting
1: one of
0: also.
1: the biggest campaigners, whichever state it might be, whether it be the Delhi election, Bihar election, West Bengal
0: Bengal
1: election, now
0: election.
1: Punjab election, you need Smriti Irani.
0: In Bengal election, in Bengali, we have heard his speeches in Bengali.
1: Exactly. And Punjab is coming. She is at the end of the day also half Punjabi. Many people had said, Ashutosh, Smriti Irani ki kahani khatam. But clearly, never say never. बहुत मीम्स बनाए थे लोगों ने अमेठी के रिजल्ट के बाद.
2: मैंने तो कभी नहीं कहा कि स्मृति ईरानी की कहानी खत्म। देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में जो 2014 के बाद से वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस हैपेंड इज दैट पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन आर एनोनिमस फेसेस। दे वर्क इन शेडोज एंड एंड सम ऑफ देम हैड डन सम ग्रेट वर्क। आई एम नॉट डिस्काउंटिंग दैट। स्मृति ईरानी समबडी हु लाइक्स टू बी इन द लाइमलाइट, हु लाइक्स टू गिव इंटरव्यूज, टू टॉक बिग, and that's a plus with her, because she has been in the in the Bombay film industry, so she knows how to. But to make herself anonymous, to live in shadows, and to work for the party organization, it requires a different kind of skill altogether. She's a good campaigner. She speaks well. She gives good interviews. She can enthrall a rally. But whether she can work as a as an organization man, as an organization person, that is something which has to be seen. That requires a lot of patience. I had worked in organizations, so I know that you have to deal with all kinds of workers from the top to the bottom, and everybody has a different idea, and you have to satisfy, you have to make every, you have to take everybody along. I think that's a big challenge. Contesting election, winning election, being in cabinet ministry is a different ballgame altogether. But to work as a general secretary of the BJP, is a high-profile political party in shadows, requires a different
1: Well,
2: skill
1: some
2: altogether.
1: people work in shadows. You've got a Sunil Bansal for that. You've got a Vinod Tavade for that. Some people also need to take on the Dimagi
2: Riju ji has clarified that what does the Prime Minister mean by the Dimagi Naxal. See, let's understand this. There will be a lot of pressure on Smriti Irani because the four general secretaries have been removed. Arun Singh has been removed, and others also have been removed. Sunil Bansal is one man that those who know BJP, those who have worked in RSS, know who Sunil Bansal is. But if I ask anybody outside the BJP, people will not know him. But he is a great asset to the party. And one day I see him as a party's general secretary organization. He has that kind of a capability. He can be the party president also. Sunil Bansal has that. But he doesn't believe in giving interviews, being high profile, something like that. So the organization man, by definition, has to be anonymous, has to work in shadows if the party has to grow, if the party has to, because somebody who's high profile has a different role altogether.
1: Tuhin Sinha is smiling.
3: Well, I don't know what Ashutosh ji is cribbing about today, because Smriti Irani has been the Mahila Morcha president when BJP was in opposition between 2012 to 2014, and she did a phenomenal job rallying women across the against the UPA. And also, like you mentioned, we need leaders to take on Dimagi Naxals. We need leaders to beat Rahul Gandhi in his own den, which is something she has done very well. So, that's what I'm saying. This is a brilliant combination. We have people who are aggressive. We have people who work quietly behind the scenes and ensure results, and which is what a team should be. Even in terms of age, if you look at it, there are six people below the age of 40. There are 15 below between 40 and 49, and 21 between 50 and 59. So there is reasonable place for experience, and of course there are a few above 60 also. So there were many who claimed to know everything about the BJP team for the last 2 months, who were saying that this would be a team below 45 years. I think this is a brilliant blend of experience and youth.
1: Okay, very quickly, Ashutosh, like, and then we'll talk about the general secretaries, because you've mentioned how four of the general secretaries have been removed. But please finish your point, Ashutosh.
2: See, the difference between Vajpayee ji and the Narendra Modi ji is that Vajpayee's general secretary team was full of high-profile general secretaries. Modi's team is not a definition of the high-profile general secretaries. Hmm. And look at the success of Nirmala Sitharaman. Nirmala Sitharaman holds one of the most high-profile cabinet ministry, but she always keeps herself as a low profile. She speaks less. She doesn't give much interviews. Smriti Irani should have been today where Nirmala Sitharaman is. But just because Smriti Irani couldn't keep low profile, and so she was removed as a HRD minister because the kind of things, the kind of arrogance she has shown. So I'm not saying that she can't change herself.
1: Hmm.
2: But I have been following Smriti Irani's career graph. It's not where she wanted to be after 10 years or the 12 years of the Modi government.
1: Okay, Shantanu Gupta, do you agree? Because, I mean, to be fair, even she has held some pretty high-profile ministries. She has had as many as 5 different portfolios. Shantanu Gupta.
0: And she was always in cabinet. She was one of the important faces. And I'm sure any of the interviews a senior politician gave is in conference with the party. The politician doesn't just get up and give an interview. I think it's always conference in the party, and party allows them to grow.
1: Mm.
0: So it's saying that she gives interviews, she's vocal. It's not that. I think for all large interviews, TV interviews or any kind of interviews, it has the conference of the party. I think she's one of the vocal faces of BJP in such young age with multifaceted profile. Rightly so.
1: Okay, you talk about the national general secretaries, Arun Singh, Dushyant Gautam, Radha Mohan Das Agarwal and Tarun Chugh. Four of them removed. In charon ka ab kya hoga? Tarun Chugh ko office in charge bana diya gaya hai, jo baki general secretaries the, itne high profile unka role tha ek waqt pe. Aur ab sirf do ko hi rakha gaya hai, Samir ji. Kyun?
4: चेंजेस तो होते रहते हैं. नड्डा जी के समय भी जो थे उनमें से कई लोगों को चेंज कर दिया गया था और लंबा टेन्योर हो गया था ना इन लोगों का जनरल सेक्रेटरी के रूप में. और अब पार्टी नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, 45 इयर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो युवाओं को लेकर आएगी पार्टी मुझे लगता है. और पार्टी को लगा हुआ कि भैया विप्लव देव ज्यादा जरूरी है संगठन के हिसाब से.
1: और विप्लव देव को तो बंगाल का भी असर है क्योंकि वो बंगाल पे इंचार्ज थे.
4: बिल्कुल,
1: वहां से उनको रिवॉर्ड किया.
4: हरियाणा के भी को इंचार्ज थे, हरियाणा भी इलेक्शन उन्होंने देखा, तो विप्लव देव को लगा होगा तो पार्टी को. तो विप्लव देव को लेकर पटेल साहब को लेकर, गजेंद्र पटेल है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मध्यप्रदेश, उनको जनरल सेक्रेटरी पार्टी ने बना दिया है. संतोष पुनिया, सतीश पुनिया को बना. नहीं, पार्टी ने कास्ट कॉम्बिनेशन भी देखा होगा. यंग देखे होंगे कि एज है, ज्यादा ट्रेवल कर सकते हैं. राधा मोहन दास की एज इतनी नहीं थी, वो काफी एज के हो गए थे, ट्रेवल नहीं कर सकते. और पार्टी को लगा हो कि भाई उससे ज्यादा फंक्शनिंग नहीं हो रही है, अब पार्टी को ज्यादा एग्रेसिवली फंक्शनिंग करना होगी, तो नितिन नवीन के हिसाब से टीम को सिलेक्ट किया होगा. और मुझे लग रहा है कि जो जनरल सेक्रेटरीज बनाए गए सारे बहुत अच्छे चॉइस के बनाए गए. अगर आप देखेंगे पूरी टीम को, अगर देखेंगे स्मृति ईरानी से लेकर आप सतीश पुनिया को देखें जो राजस्थान में स्टेट प्रेसिडेंट रहे, अभी राज्यसभा उनको भेजा है, हरियाणा में उन्होंने जिस तरीके से मैनेजमेंट देखा है इलेक्शन का, और अभी पश्चिम यूपी में जिस तरीके से जाट वोट बैंक है, तो जाट से वो आते हैं, काफी लो प्रोफाइल है, सॉफ्ट स्पोकन है, संगठन को समझते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है. तो मुझे लग रहा है कि
1: वो खुद अपना इलेक्शन हार गए राजस्थान में.
4: नहीं, इलेक्शन हारने, स्मृति ईरानी भी इलेक्शन हारी है ऐसे तो. इलेक्शन हारने से मतलब नहीं होता ना कि इलेक्शन हार गए इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है. इलेक्शन हारना बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चॉइस है. द्विवेदी भी अगर उत्तर प्रदेश से जो आए, एबीपी में रहे, वो संगठन के रहे, संघ में उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, लंबा उनका अनुभव रहा है संगठन के अंदर, आज वो जनरल सेक्रेटरी बनकर आए, तो मुझे लग रहा है कि पार्टी को लगा कि भाई ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है. अब पार्टी इतने राज्यों में सरकार है और आने वाले समय 29 के लिए पार्टी को जिस तरह तैयार करना है, तो युवाओं को जो एक्टिव है, जिनका बहुत एक्सपीरियंस रहा है संगठन के अंदर, संघ के अंदर, उन लोगों को जनरल सेक्रेटरी के रूप में लिया है. और मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतर टीम जनरल सेक्रेटरी के रूप में दिखी है.
1: Okay.
4: एक और नाम जोड़ देता हूँ कि सौदान सिंह को वापिस, जो वाइस प्रेसिडेंट बना दिया रहा जिनको, उनको वापिस जो अपने संगठन महामंत्री हैं बी एल संतोष, उनके अंडर ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी के रूप में उनको लेकर आए डिप्टी के लिए, जो पहले थे उनके साथ वी सतीश के साथ, बाद में उनको हटाकर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया.
1: बहुत लोग ये भी कह रहे हैं राम माधव की वजह से कि आरएसएस की पकड़ जो है ज्यादा अब इसके पार्टी के ऊपर दिखाई दे रही है, जिस तरीके से एडिशंस हुए हैं, राम माधव हैं, आपने सौदान सिंह की बात की है, तो आरएसएस का ज्यादा इफेक्ट दिख रहा है. क्या आपको लगता है?
4: निश्चित रूप से काफी जो टीम, अगर मैं देखता हूँ 65 जो टीम,
1: डॉक्टर स्वदेश सिंह हैं, उनका भी आरएसएस से कनेक्शन है.
4: 65 टीम है, उसमें मुझे लगता है कम से कम 32-34 जो है वो आरएसएस बैकग्राउंड से जुड़े हुए कहीं ना कहीं. कोई एबीवीपी में रहा है, कोई आरएसएस संगठन में रहा है, कोई उनकी आड़ोले से जुड़ा हुआ रहा है, तो टीम आरएसएस से काफी जुड़े हुए लोग रहे.
1: लेट मी डू क्विक कंपैरिजन बिटवीन टीम नड्डा एंड टीम नितिन नवीन, एंड देन वी कैन फिगर आउट वेदर देयर आर सम वेरी clear changes between the two teams. So Nitin Nabin has actually a much more compact team, 65 as compared to Team Nadda. You've got fewer women, as many Muslim faces,

0: स्टूडेंट लीडर एंड यूथ एक्टिविस्ट देवेंद्र, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आपका ये लड़ाई, ये आपका ये जंग जो काफ़ी हफ्तों के लिए चला है, शायद ये अब समाप्त होने वाला है या तो समाप्त हो चुका है। आपके सब डिमांड्स को मंजूर को एक्सेप्ट किया गया है। आप लोग सीबीआई डिमांड भी, सीबीआई प्रो भी मांग रहे थे, फिलहाल उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है।
1: ये सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि छात्र का संघर्ष बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत हद तक माने हैं, उस पर भले कही नहीं गई है, लेकिन बाकी जितना भी डिमांड था वो सारे डिमांड पूरी कर ली गई है। और इसके लिए विशेष रूप से आपके चैनल के पूरे टीम को और जितने भी सहयोग के छात्र, अभिभावक, सम्मानित शिक्षक, समाजसेवी, प्रशासन के टीम, डॉक्टर्स के टीम, सफाई कर्मी, सबको हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वैसे उनको भी धन्यवाद जो बिलिंगकिट के माध्यम से और जोमेटो के माध्यम से हम लोग को अजनबी बनकर पानी पहुंचाया, नाश्ता पहुंचाया, सबको धन्यवाद। लेकिन हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम की गारंटी नहीं मिलती है कि आगे भविष्य में कभी भी पेपर लीक ना हो। अगर हो तो उसको पकड़ा जाए और उसको कड़ी कार्रवाई हो, आजीवन कारावास हो, तभी जाकर के हम लोग का छात्र को न्याय मिलेगा। क्योंकि मैं अपने जीवन में कई एग्जाम को रद्द होते हुए देखा है, कई एग्जाम पर सीबीआई जांच देखा है, कई एग्जाम पर सीआईडी जांच देखा है। आज हम बात करते हैं इस सीजीएल एग्जाम रद्द की। वो एग्जाम को मैं 29 जनवरी 2024 को भी रद्द कराया था, दोबारा एग्जाम हुई, दोबारा पेपर लीक हुआ, धांधली हुई। तो जांच और रद्द सॉल्यूशन नहीं है, ये छात्र के साथ न्याय नहीं है।
0: देवेंद्र, एक चीज बताइए, आपका एक प्राइमरी कंसर्न ये थर्ड पार्टी कंडक्टिंग एजेंसीज था, टीडीपीएल जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी था, उसके खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके अलावा आप क्या होना चाहिए, अगर आप एग्जाम क्लीन अप चाहते तो एक ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए?
1: एक ऐसा कानून लाए या एक ऐसा निगरानी कमेटी बनाए जो हर एग्जाम का हर स्टेज पर ऑडिट हो, उसका रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। भाई मान के चलिए पीटी एग्जाम हुआ, उसका क्या एसओपी का पालन हुई, क्या नियमावली का पालन हुआ, मेंस पर क्या हुआ, इंटरव्यू लाइव हो, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड हो, पारदर्शिता सब का जवाबदेही हो उसको। अभी क्या होता है कि संवैधानिक संस्था को कोई निगरानी नहीं कर सकता, इस हवाला देते हुए खूब धांधली हो रहा है। अगर निगरानी के लिए अभी मान क्वेश्चन ही सेट करना है, कई स्टेप पर सेट होते हैं, लेकिन हर स्टेज का एक ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए कि भाई वो क्या किया, कितना पारदर्शिता किया। फिर अगला स्टेप पर होगा तो पहला स्टेप वाला को मालूम नहीं होना चाहिए। इस तरीके का एक प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि हमने ये सब नियम का, सब शर्त का, पूरा एसओपी का, नियमावली का हमने पालन किया है, इस तरीके से पारदर्शिता सुनिश्चित हो। इसके लिए विधानसभा में कानून बनाने की आवश्यकता है तो बनाया जाए, संविधान को संशोधन करने की आवश्यकता है तो वो भी किया जाए। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि मेरा जैसा कुर्बानी और आने वाले
0: आपने एक बड़ा जीत जीता है आज, और बधाई हो इसके लिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी। शुक्रिया, थैंक यू। वेल, द बीजेपी हैज नाउ अनवेल्ड इट्स न्यू नेशनल टीम विद की अपॉइंटमेंट्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग सेवरल प्रोमिनेंट लीडर्स, वुमेन, यूथ एंड अ स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश अहेड ऑफ द इलेक्शंस। स्मृति ईरानी इज बैक एज द जनरल सेक्रेटरी, राम माधव हैज ऑल्सो बीन रोप्ड इन, एंड वसुंधरा राजे एज वाइस प्रेसिडेंट्स, एंड विनोद तावड़े एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पीयूष गोयल गेट्स द पोस्ट ऑफ ट्रेजरर, while the former Aam Aadmi Party leader Sandeep Pathak has been appointed National Secretary. Continuing with women leaders in Nitin Naveen's new team, the BJP has several prominent faces across key organizational posts, including Smriti Irani, Vasundhara Raje and Deepuran Deshwari. The Uttar Pradesh focus, as far as the UP focus is concerned,

0: the BJP has given the state several key organizational posts, including general secretary, vice presidents, national secretaries, and both OBC and minority Morcha leaders. There's also a mix of youth and experience, with the BJP having retained Vinod Tawde and Sunil Bansal as general secretaries. Three former chief ministers also feature prominently in this new team.
1: मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है, और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं, और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी, और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद, और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी।
2: देखिए, निश्चित ही बहुत बड़ी जवाबदारी है और गर्व भी महसूस होता है। एक सामान्य से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर की जवाबदारी दी गई है। मैं प्रदेश के संगठन को, राष्ट्रीय संगठन को, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय मोदी जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का और कार्यकर्ता भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं, और इस जिम्मेदारी पे प्राण प्राण से जुटकर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।
0: All right, well, we are joined now by a very special guest. He'll join us in a few moments from now, Deepak Maske. He heads the BJP's IT cell. Thank you very much, Deepak ji, for being with us. A huge responsibility. You're replacing Amit Malviya in this very big role. I'm just curious to know, how important is it for the BJP, with elections coming up, to spread the message, not only of the government, but of the party? How is social media essential for communications more than ever before?
3: देखिए, दो बातों का जवाब मैंने दूंगा कि एक आपने कहा कि आई एम रिप्लेसिंग अमित मालवी। हमारी पार्टी में हम किसी को रिप्लेस नहीं करते हैं, हमको अलग अलग दायित्व मिलता है
0: जी।
3: उन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक संभाला था और पार्टी ने अब मुझे दायित्व दिया है, और एक तो ये विषय था। दूसरा, सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, करता रहा है और आने वाले समय में और भी करेगा। हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो अच्छा कंटेंट है, जो ट्रू कंटेंट है, उसको अलग अलग मीडियम से लोगों तक पहुंचाना। अलग अलग राज्यों की तासीर अलग अलग होती है, तो आइडियाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एम ये रहेगा कि सरकार की उपलब्धियां, और अगर विदेशी पार्टियां अगर कुछ भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है, तो उसको ट्रू कंटेंट के साथ लोगों तक पहुंचाना।
0: दीपक जी, हमने कुछ दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे ज्यादा पोस्ट कर रहे थे। शायद बीजेपी ने इतना इंस्टाग्राम में पहले पोस्ट नहीं किया है, पर एक जेंजी, एक नया इंडिया, वो लोग शायद ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं। आप ये मानते हैं कि आप लोगों का फोकस ज़्यादा इंस्टाग्राम में होना चाहिए? ट्विटर पे तो आप लोग माहिर हो, पर डू यू थिंक यू नीड टू डू मच मोर ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया फोरम्स?
3: बिल्कुल, हम लोग सभी जितने भी मीडियम से सोशल मीडिया में, उसमें हम लोग और एक्टिविटी बढ़ाएंगे। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे ग्रुप्स इम्पोर्टेंट, सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं।
0: और तो मतलब आपका फोकस, आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताइए। आई मीन, हाउ इज इट गोइंग टू बी अ रियल प्रायोरिटी फॉर द बीजेपी गोइंग फॉरवर्ड?
3: देखिए, इंस्टाग्राम तो हमारी प्रायोरिटी रहेगा ही, यूथ सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम में है, तो हर प्लेटफॉर्म्स के जो कंटेंट हैं, जो उसके ऑडियंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर प्लान करेंगे। अभी भी अच्छा प्लानिंग हो रहा है, उसको बेटर आइडियाज के साथ और फ्लोट करेंगे, ताकि हमारे जो स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम में ज्यादातर यूथ जुड़ता है, तो उनके स्पेसिफिक कंटेंट हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे। फेसबुक के ऑडियंस थोड़े से अलग हैं, ट्विटर के ऑडियंस अलग हैं, तो वो सिलेक्टिव चीजें रहेंगी, और वैसे हम लोग कंटेंट बनाएंगे और उनको भेजने का है, ताकि जो सोशल मीडिया में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं, उन तक बीजेपी की बातें पहुंच सके।
0: दीपक जी, सोशल मीडिया में तो काफ़ी चीज़ पॉजिटिव है, काफ़ी चीज़ नेगेटिव है। आजकल का ज़माना मीम का ज़माना है, बीजेपी के खिलाफ काफ़ी मीम्स हो चुके हैं। आप लोग भी मीम्स बनाते हैं अपने पॉलिटिकल राइवल्स को टारगेट करने के लिए, इलेक्शंस के टाइम, बाकी टाइम भी। तो आपके ख्याल से ये मैसेजिंग जो है मीम्स के थ्रू काफ़ी बढ़ चुका है, और ये आपका स्ट्रैटेजी में ये रहेगा?
3: देखिए, अभी जैसे जैसे स्थितियां बनेंगी, मेनली रील्स बहुत अच्छी चल रही हैं, लोग रील्स को बहुत देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंटेंट्स को रील्स के द्वारा नीचे तक पहुंचाने का भी एक आइडिया रहेगा। और मैंने कहा ना कि हर प्लेटफॉर्म सेम है ग्लोबली, लेकिन अलग अलग राज्यों के हिसाब से उन तक पहुंचाना और किस तरह की रील्स बनेंगी, क्या कंटेंट को, सिमिलर कंटेंट्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों के हिसाब से हमारा बनाने का प्रयास होगा। मेरा मेरा सिर्फ कहना ये है कि प्लेटफॉर्म्स में जो ऑडियंस हैं उनका हम फोकस करेंगे, उनके हिसाब से और स्टेट के हिसाब से, स्टेट स्पेसिफिक हिसाब से उस मैसेज को अलग अलग रील से अलग अलग पोस्ट के माध्यम से नीचे पहुंचाने का प्रयास होगा। ये हमारा बेसिक और रॉ आइडिया है। अभी जब हम लोग दिल्ली में बैठेंगे पूरी टीम के साथ, तो इसमें और मंथन करेंगे और क्या क्या नए आइडियाज निकलते हैं उसके हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी, खासकर हमारा हमारे नितिन नवीन जी का निर्देश, पूरा सेंट्रल टीम का जो निर्देश रहेगा उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज को और रिफाइन किया जाएगा।
0: दीपक जी, एक प्राइमरी कंसर्न है सोशल मीडिया पे ट्रोल आर्मीज, और ये ट्रोल आर्मीज कहाँ से आते कभी कभी पता नहीं रहता है। ये एलिगेशन रह चुका है कि बीजेपी का भी ट्रोल आर्मीज है, ऑपोजिशन का भी ट्रोल आर्मीज है, विदेश से लोग जिनका कोई एजेंडा है शायद उनका भी कोई ट्रोल आर्मी है, और ये काफ़ी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जहाँ अनोनमस आइडेंटिटी, अनोनमस वो लेके जो भी कहना है कुछ भी बोल देते लोग, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। आप ये मानते हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक है और ऑथेंटिक कम्युनिकेशन को ब्लॉक करता है?
3: ये ऑथेंटिक कम्युनिकेशन होना चाहिए। ट्रोल आर्मीज को लेके आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते रहते हैं, और मुझे लगता है कि ऑथेंटिक कंटेंट लोगों तक जाना चाहिए, लोगों तक सच्चाई जाना चाहिए।
0: और फॉरेन फोर्सेस, जैसे हमने देखा है चाइना से कभी कभी या तो पाकिस्तान से, अब सिंदूर के दौरान काफ़ी नेगेटिव मैसेजिंग आ रहा था, और ये फॉल्स मैसेजिंग था, एआई जेनरेट करके फॉल्स मैसेजिंग, फॉल्स अभी भी होता रहता है ये कभी कभी हमारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे डिप्लोमेट्स के खिलाफ। तो अब नए आईटी कानून भी आ चुके हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना कितना प्रायोरिटी होना चाहिए?
3: बिल्कुल प्रायोरिटी रहेगा। इस तरह के जो लोग रहते हैं या जहाँ से भी ये होता है, मैंने कहा फॉल्स पोस्टिंग और ट्रोल, इस तरह की जो चीज़ें होती है, हमारा आईटी का कानून भी बन गया है, हम इसकी पूरी मदद लेंगे और जो भी जानकारी हमको मिलेगी निश्चित रूप से उसको रिपोर्ट किया जाएगा।
0: और ये ज़रा विस्तार से बताइए, आप जेंजी को टारगेट करने के लिए आपने कुछ तो बताया था और भी बताया, आई एम आस्किंग यू फॉर मोर डिटेल, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट आर, हाउ आर यू गोइंग टू टारगेट जेंजी? जेंजी इज़ वेरी बिग, दे हैव 1 मिलियन डिफरेंट इंटरेस्ट्स, और बियॉन्ड पॉलिटिक्स, हाउ आर यू गोइंग टू एंगेज जेन जी?
3: देखिए, जेन जीज आर ऑलरेडी एंगेज्ड, वो सोशल मीडिया में एंगेज्ड हैं। उन तक मैंने आपको बहुत ब्रॉडली बताया कि हम अच्छा कंटेंट भेजेंगे, ट्रू कंटेंट भेजेंगे, जो फॉल्स चीजों को डाल के जो भ्रम फैला रहे हैं जो लोग, उनको काउंटर करना, सही जानकारियां जेन जीज तक पहुंचे, उसकी मीडियम्स अलग से हो सकते हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा बातें कैसे पहुँचे, कैसे उनको इंगेज करें। एक अभी मैं जब दिल्ली पहुँचूंगा और मेरी नई टीम के साथ बैठूंगा, तो हम एक बहुत स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, और मालवी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, उनकी भी जो मदद लेंगे, उनकी स्ट्रेटेजी को और कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकेगा, वो सारी चीज़ों का मंथन होगा, और एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग इस काम पर जुटेंगे।
0: दीपक जी, जस्ट वन और टू मोर क्वेश्चंस। हमारे नए आईटी रेगुलेशंस है, और इसके तहत अगर कोई पोस्ट नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, उसको उन इन पोस्ट को पुल डाउन किया जा सकता है, और इसमें काफ़ी लीगल केसेस भी हो चुका है ट्विटर के खिलाफ, फेसबुक के खिलाफ इत्यादि, पर इसमें एक ट्रांसपेरेंसी का भी बात है, हु इज आस्किंग फॉर पोस्ट्स टू बी टेकिंग डाउन, शुड एन एक्सप्लेनेशन नॉट बी गिवन ऑन वाई अ पोस्ट हैज़ बिन टेकन डाउन, इसमें आपको, आपका राय क्या है इसमें?
3: देखिए, मेरा राय यह है कि अगर देश विरोधी कोई भी पोस्ट हो रही है और उसकी रिपोर्ट होना चाहिए, और जो आईटी लॉज हैं उसके आगे उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई होना चाहिए।
0: पर दीपक जी, ये सिर्फ देश देश विरोधी पोस्ट्स नहीं है, ये पॉलिटिकली पॉलिटिकल पोस्ट भी हो सकता है जो जो जिससे आप डिसएग्री करते हैं, और आरोप ये है कि सेवरल गवर्नमेंट्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लॉ टू फोर्स सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज टू टेक डाउन पोस्ट, और ये नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इस पर आपका राय क्या है?
3: कि मैंने आपको ये भी कहा ना भी कि इस तरह की अगर कोई पोस्ट आती है जो नहीं होना चाहिए, जो इलीगल है हमारे लॉज के हिसाब से, इट शुड बी रिपोर्टेड, और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। देश हित में है, पोलिटिकली रॉन्ग है, अगर वो गलत है तो गलत है, अगर आई टी नियमों के हिसाब से अगर वो गलत है तो इट्स रॉन्ग, इट शुड बी रिपोर्टेड, और जो लॉ कहता है उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई होना चाहिए।
0: एंड अ फाइनल क्वेश्चन टू यू, यू आर अ नॉन दिल्ली नॉन मेट्रो फेस, द बीजेपी इज नाउ गॉट अ कंप्लीटली न्यू टॉप लीडरशिप, यू नो, वर्किंग विद योर बीजेपी प्रेसिडेंट, इज दिस अ डिलिबरेट स्ट्रैटेजी टू ब्रिंग समबडी हु इज अ नॉन मेट्रो फेस टू हेड, you know, the IT or the digital, be the digital face, as it were, of the party? Do you think that is part of the strategy?
3: It's not a strategy. What I think, BJP lagatar daitva badalti rehti hai, aur usi ka ye bhi ek hissa hai. Naye logo ko laya jata hai, aur unko us tarah se kaam aage badhta hai. Koi isko specific strategy ka roop dena theek nahi hai.
0: Deepak Maskey ji, thank you very much. You have an awesome responsibility. Let's hope that social media messaging is positive. We need that to be the case. And so many of the negative things go away. Thank you very much, sir. Thank you very much for being with NDTV.
4: Three decades of watching the world change. Of asking the questions that couldn't wait. Telling the stories that couldn't be ignored. Of holding the line when it mattered most. Times change. Our purpose doesn't. NDTV 24/7 is now NDTV. When it really matters.

0: बात की।
1: जी सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि छात्र का संघर्ष बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत हद तक माने हैं, उस पर भले कही नहीं गई है, लेकिन बाकी जितना भी डिमांड था वो सारे डिमांड पूरी कर ली गई है। और इसके लिए विशेष रूप से आपके चैनल के पूरे टीम को और जितने भी सहयोग के छात्र, अभिभावक, सम्मान्य शिक्षक, समाजसेवी, प्रशासन के टीम, डॉक्टर्स के टीम, सफाई कर्मी, सबको हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वैसे उनको भी धन्यवाद जो विलिखित के माध्यम से और जोमेटो के माध्यम से हम लोग को अजनबी बनकर पानी पहुंचाया, नाश्ता पहुंचाया, सबको धन्यवाद। लेकिन हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम की गारंटी नहीं मिलती है कि आगे भविष्य में कभी भी पेपर लीक ना हो। अगर हो तो उसको पकड़ा जाए और उसको कड़ी कार्रवाई हो, आजीवन कारावास हो, तभी जा करके हम लोग का छात्र को न्याय मिलेगा। क्योंकि मैं अपने जीवन में कई एग्जाम को रद्द होते हुए देखा है, कई एग्जाम पर सीबीआई जांच देखा है, कई एग्जाम पर सीआईडी जांच देखा है। आज हम बात करते हैं इस सीजीएल एग्जाम रद्द की, वो एग्जाम को मैं 29 जनवरी 2024 को भी रद्द कराया था, दोबारा एग्जाम हुई, दोबारा पेपर लीक हुआ, धांधली हुई। तो जांच और रद्द सॉल्यूशन नहीं है ये, तो
2: देवेंद्र जी आप एक चीज, देवेंद्र एक चीज बताइए, आपका एक प्राइमरी कंसर्न ये थर्ड पार्टी कंडक्टिंग एजेंसीज था, TDPL जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट का एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी था, उसके खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके अलावा आप क्या होना चाहिए, अगर आप एग्जाम क्लीनअप चाहते तो एक ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए?
1: एक ऐसा कानून लाए या एक ऐसा निगरानी कमेटी बनाए जो हर एग्जाम का हर स्टेज पर ऑडिट हो, उसका रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। भाई मान के चलिए पीटी एग्जाम हुआ, उसका क्या एसओपी का पालन हुई, क्या नियमावली का पालन हुआ, मेंस पर क्या हुआ, इंटरव्यू लाइव हो, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड हो, पारदर्शिता सबका जवाबदेही हो। उसको अभी क्या होता है कि संवैधानिक संस्था को कोई निगरानी नहीं कर सकता, इस हवाला देते हुए खूब धांधली हो रहा है। अगर निगरानी के लिए अभी मैंने क्वेश्चन ही सेट करना है, कई स्टेप पर सेट होते हैं, लेकिन हर स्टेज का एक ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए कि भाई वो क्या किया, कितना पारदर्शिता किया, फिर अगला स्टेप पर होगा तो पहला स्टेप वाला को मालूम नहीं होना चाहिए। इस तरीके का एक प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि हमने ये सब नियम का, सब शर्त का, पूरा एसओपी का, नियमावली का हमने पालन किया है, इस तरीके से पारदर्शिता सुनिश्चित हो। इसके लिए विधानसभा में कानून बनाने की आवश्यकता है तो बनाया जाए, संविधान को संशोधन करने की आवश्यकता है तो वो भी किया जाए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि मेरा जैसा कुर्बानी और आने वाले भविष्य में कोई दूसरे बच्चों को देना पड़े।
2: नहीं नहीं, एकदम सही बात कह रहे हैं देवेंद्र, और ये किसी भी हमारे किसी भी स्टेट में किसी भी एग्जाम में ये नहीं होना चाहिए। आपने एक बड़ा जीत जीता है आज, और बधाई हो इसके लिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू NDTV। शुक्रिया, थैंक यू। Well, the BJP has now unveiled its new national team with key appointments across the organization, including several prominent leaders, women, youth, and a strong representation from Uttar Pradesh ahead of the elections. Smriti Irani is back as the General Secretary. Ram Madhav has also been roped in, and Vasundhara Raje as Vice Presidents, and Vinod Tawde as General Secretary of the organization. Piyush Goyal gets the post of Treasurer, while the former Aam Aadmi Party leader Sandeep Pathak has been appointed National Secretary. Continuing with women leaders in Nitin Naveen's new team, the BJP has several prominent faces across key organizational posts, including Smriti Irani, Vasundhara Raje, and D. Purandeshwari. The Uttar Pradesh focus, as far as the UP focus is concerned, the BJP has given the state several key organizational posts, including General Secretary, Vice Presidents, National Secretaries, and both OBC and Minority Morcha leaders. There's also a mix of youth and experience, with the BJP having retained Vinod Tawde and Sunil Bansal as General Secretaries. Three former Chief Ministers also

0: feature prominently in this new team.
1: मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी।
2: देखिए, निश्चित ही बहुत बड़ी जवाबदारी है और गर्व भी महसूस होता है। एक सामान्य से कार्यकर्ता को राष्ट्रीय स्तर की जवाबदारी दी गई है। मैं प्रदेश के संगठन को, राष्ट्रीय संगठन को, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, माननीय मोदी जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का और कार्यकर्ता भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं और इस जिम्मेदारी पे प्राण प्राण से जुटकर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।
0: All right, well, we are joined now by a very special guest. He'll join us in a few moments from now, Deepak Maske. He heads the BJP's IT cell. Thank you very much, Deepak ji, for being with us. A huge responsibility. You're replacing Amit Malviya in this very big role. I'm just curious to know, how important is it for the BJP, with elections coming up, to spread the message, not only of the government, but of the party? How is social media essential for communications more than ever before?
3: देखिए, दो बातों का जवाब मैंने दूंगा कि एक आपने कहा कि आई एम रिप्लेसिंग अमित मालवी। हमारी पार्टी में हम किसी को रिप्लेस नहीं करते हैं, हमको अलग अलग दायित्व मिलता है
0: जी।
3: उन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक संभाला था और पार्टी ने अब मुझे दायित्व दिया है और एक तो ये विषय था, दूसरा सोशल मीडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, करता रहा है और आने वाले समय में और भी करेगा। हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो अच्छा कंटेंट है, जो ट्रू कंटेंट है, उसको अलग अलग मीडियम से लोगों तक पहुंचाना। अलग अलग राज्यों की तासीर अलग अलग होती है तो आइडियाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एम ये रहेगा कि सरकार की उपलब्धियां और अगर विदेशी पार्टियां अगर कुछ भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है, तो उसको ट्रू कंटेंट के साथ लोगों तक पहुंचाना।
0: दीपक जी, हमने कुछ दिन पहले देखा कि प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे ज्यादा पोस्ट कर रहे थे। शायद बीजेपी ने इतना इंस्टाग्राम में पहले पोस्ट नहीं किया है, पर एक जेंजी, एक नया इंडिया, वो लोग शायद ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं। आप ये मानते हैं कि आप लोगों का फोकस ज़्यादा इंस्टाग्राम में होना चाहिए? ट्विटर पे तो आप लोग माहिर हो, पर डू यू थिंक यू नीड टू डू मच मोर ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया फोरम्स?
3: बिल्कुल, हम लोग सभी जितने भी मीडियम से सोशल मीडिया में, उसमें हम लोग और एक्टिविटी बढ़ाएंगे। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए रहते हैं, लेकिन हमारे लिए सारे ग्रुप्स इम्पोर्टेंट, सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं।
0: और तो मतलब आपका फोकस, आप इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बताइए, आई मीन हाउ इज इट गोइंग टू बी अ रियल प्रायोरिटी फॉर द बीजेपी गोइंग फॉरवर्ड?
3: देखिए, इंस्टाग्राम तो हमारी प्रायोरिटी रहेगा ही, यूथ सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम में है, तो हर प्लेटफॉर्म्स के जो कंटेंट हैं, जो उसके ऑडियंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर प्लान करेंगे। अभी भी अच्छा प्लानिंग हो रहा है, उसको बेटर आइडियाज़ के साथ और फ्लोट करेंगे ताकि हमारे जो स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम में ज़्यादातर यूथ जुड़ता है, तो उनके स्पेसिफिक कंटेंट हम उसमें डालने का प्रयास करेंगे। फेसबुक के ऑडियंस थोड़े से अलग हैं, ट्विटर के ऑडियंस अलग हैं, तो वो सिलेक्टिव चीज़ें रहेंगी और वैसे हम लोग कंटेंट बनाएंगे और उनको भेजने का है ताकि जो सोशल मीडिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, उन तक बीजेपी की बातें पहुंच सके।
0: दीपक जी, सोशल मीडिया में तो काफ़ी चीज़ पॉजिटिव है, काफ़ी चीज़ नेगेटिव है। आजकल का ज़माना मीम का ज़माना है, बीजेपी के खिलाफ काफ़ी मीम्स हो चुके हैं। आप लोग भी मीम्स बनाते हैं अपने पॉलिटिकल राइवल्स को टारगेट करने के लिए इलेक्शंस के टाइम, बाकी टाइम भी। तो आपके ख्याल से ये मैसेजिंग जो है मीम्स के थ्रू काफ़ी बढ़ चुका है और ये आपका स्ट्रैटेजी में ये रहेगा?
3: देखिए, अभी जैसे जैसे स्थितियां बनेंगी, मेनली रील्स बहुत अच्छी चल रही हैं, लोग रील्स को बहुत देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंटेंट्स को रील्स के द्वारा नीचे तक पहुंचाने का भी एक आइडिया रहेगा। और मैंने कहा ना कि हर प्लेटफॉर्म सेम है ग्लोबली, लेकिन अलग अलग राज्यों के हिसाब से उन तक पहुंचाना और किस तरह की रील्स बनेंगी, क्या कंटेंट को, सिमिलर कंटेंट्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों के हिसाब से हमारा बनाने का प्रयास होगा। मेरा सिर्फ कहना यह है कि प्लेटफॉर्म्स में जो ऑडियंस हैं उनका हम फोकस करेंगे, उनके हिसाब से और स्टेट के हिसाब से, स्टेट स्पेसिफिक हिसाब से उस मैसेज को अलग अलग

0: से अलग अलग पोस्ट के माध्यम से नीचे पहुंचाने का प्रयास होगा। ये हमारा बेसिक और रॉ आइडिया है। अभी जब हम लोग दिल्ली में बैठेंगे पूरी टीम के साथ, तो इसमें और मंथन करेंगे और क्या क्या नए आइडियाज निकलते हैं उसके हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी, खासकर हमारा हमारे नितिन नवीन जी का निर्देश, पूरा सेंट्रल टीम का जो निर्देश रहेगा उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज को और रिफाइन किया जाएगा।
1: दीपक जी, एक प्राइमरी कंसर्न है सोशल मीडिया पे ट्रोल आर्मीज़, और ये ट्रोल आर्मीज़ कहाँ से आते हैं कभी कभी पता नहीं रहता है। ये एलिगेशन रह चुका है कि बीजेपी का भी ट्रोल आर्मीज़ है, ऑपोजिशन का भी ट्रोल आर्मीज़ है, विदेश से लोग जिनका कोई एजेंडा है शायद उनका भी कोई ट्रोल आर्मी है, और ये काफ़ी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जहाँ अनोनमस आइडेंटिटी, अनोनमस वो लेके जो भी कहना है कुछ भी बोल देते लोग, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। आप ये मानते हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक है और ऑथेंटिक कम्युनिकेशन को ब्लॉक करता है?
0: ये ऑथेंटिक कम्युनिकेशंस होना चाहिए। ट्रोल आर्मीज को लेके आरोप प्रत्यारोप जरूर लगते रहते हैं, और मुझे लगता है कि ऑथेंटिक कंटेंट लोगों तक जाना चाहिए, लोगों तक सच्चाई जाना चाहिए।
1: और फॉरेन फोर्सेस, जैसे हमने देखा है चाइना से कभी कभी या तो पाकिस्तान से, ऑब सिंदूर के दौरान काफ़ी नेगेटिव मैसेजिंग आ रहा था, और ये फॉल्स मैसेजिंग था, एआई जेनरेट करके फॉल्स मैसेजिंग, फॉल्स अभी भी होता रहता है ये कभी कभी हमारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे डिप्लोमेट्स के खिलाफ। तो अब नए आईटी कानून भी आ चुके हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना कितना प्रायोरिटी होना चाहिए?
0: बिल्कुल प्रायोरिटी रहेगा। इस तरह के जो लोग रहते हैं या जहाँ से भी ये होता है, मैंने कहा फॉल्स पोस्टिंग और ट्रोल, इस तरह की जो चीज़ें होती है, हमारा आईटी का कानून भी बन गया है, हम इसकी पूरी मदद लेंगे और जो भी जानकारी हमको मिलेगी निश्चित रूप से उसको रिपोर्ट किया जाएगा।
1: और ये ज़रा विस्तार से बताइए, आप जेंजी को टारगेट करने के लिए आपने कुछ तो बताया था और भी बताया, आई एम आस्किंग यू फॉर मोर डिटेल, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, व्हाट आर हाउ आर यू गोइंग टू टारगेट जेंजी? जेंजी इज़ वेरी बिग, दे हैव 1 मिलियन डिफरेंट इंटरेस्ट्स, और बियॉन्ड पॉलिटिक्स हाउ आर यू गोइंग टू इंगेज जेंजी?
0: देखिए, जेंजीज आर ऑलरेडी एंगेज्ड, वो सोशल मीडिया में एंगेज्ड हैं। उन तक मैंने आपको बहुत ब्रॉडली बताया कि हम अच्छा कंटेंट भेजेंगे, ट्रू कंटेंट भेजेंगे। जो फॉल्स चीज़ों को डाल के जो भ्रम फैला रहे हैं जो लोग, उनको काउंटर करना, सही जानकारियां जेंजीज तक पहुंचे, उसकी मीडियम्स अलग से हो सकते हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा बातें कैसे पहुंचे, कैसे उनको इंगेज करें। एक अभी मैं जब दिल्ली पहुंचूंगा और मेरी नई टीम के साथ बैठूंगा, तो हम एक बहुत स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, और मालवीय जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, उनकी भी जो मदद लेंगे, उनकी स्ट्रेटेजी को और कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकेगा, वो सारी चीज़ों का मंथन होगा और एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग इस काम पे जुटेंगे।
1: दीपक जी, जस्ट वन और टू मोर क्वेश्चंस। हमारे नए आईटी रेगुलेशंस हैं, और इसके तहत अगर कोई पोस्ट नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है उसको, उन इन पोस्ट को पुल डाउन किया जा सकता है, और इसमें काफ़ी लीगल केसेस भी हो चुका है ट्विटर के खिलाफ, फेसबुक के खिलाफ इत्यादि, पर इसमें एक ट्रांसपेरेंसी का भी बात है। हु इज़ आस्किंग फॉर पोस्ट टू बी टेकिंग डाउन? शुड एन एक्सप्लेनेशन नॉट बी गिवन ऑन वाई अ पोस्ट हैज़ बिन टेकन डाउन? इसमें आपको, आपका राय क्या है इसमें?
0: देखिए, मेरा राय यह है कि अगर देश विरोधी कोई भी पोस्ट हो रही है और उसकी रिपोर्ट होना चाहिए, और जो आईटी लॉज हैं उसके अगर उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई होना चाहिए।
1: पर दीपक जी, ये सिर्फ देश विरोधी पोस्ट्स नहीं है, ये पॉलिटिकली पॉलिटिकल पोस्ट भी हो सकता है जो जिससे आप डिसएग्री करते हैं, और आरोप ये है कि सेवरल गवर्नमेंट्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द लॉ टू फोर्स सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स टू टेक डाउन पोस्ट, और ये नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इस पे आपका राय क्या है?
0: कि मैंने आपको ये भी कहा ना भी कि इस तरह की अगर कोई पोस्ट आती है जो नहीं होना चाहिए, जो इलीगल है हमारे लॉज के हिसाब से, इट शुड बी रिपोर्टेड और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। देश हित में है, पॉलिटिकली रॉन्ग है, अगर वो गलत है तो गलत है। अगर आईटी नियमों के हिसाब से अगर वो गलत है तो इट्स रॉन्ग, इट शुड बी रिपोर्टेड, और जो लॉ कहता है उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई होना चाहिए।
1: एंड अ फाइनल क्वेश्चन टू यू, यू आर अ नॉन दिल्ली नॉन मेट्रो फेस, द बीजेपी इज नाउ गॉट अ कंप्लीटली न्यू टॉप लीडरशिप, यू नो, वर्किंग विथ योर बीजेपी प्रेजिडेंट, इज दिस अ डिलिबरेट स्ट्रैटेजी टू ब्रिंग समबडी हु इज अ नॉन मेट्रो फेस टू हेड you know, the IT or the digital, be the digital face, as it were, of the party? Do you think that is part of the strategy?
0: It's not a strategy. What I think, BJP लगातार दायित्व बदलती रहती है और उसी का ये भी एक हिस्सा है. नए लोगों को लाया जाता है और उनको उस तरह से काम आगे बढ़ता है. कोई इसको स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी का रूप देना ठीक नहीं है.
1: दीपक मास्के जी, थैंक यू वेरी मच. यू हैव एन ऑसम रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेट्स होप दैट सोशल मीडिया मैसेजिंग इज पॉजिटिव. वी नीड दैट टू बी द केस एंड सो मेनी ऑफ द नेगेटिव थिंग्स गो अवे. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद एनडीटीवी.
2: A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation. NDTV World brings together the voices defining the next chapter of India-Nepal relations. Nepal's Foreign Minister, Shishir Khanna, Finance Minister, Dr. Swarnim Wagle, Dr. Shashi Tharoor, actor Manisha Koirala, and Dr. Ram Madhav. Diplomacy, commerce, security, infrastructure, tourism, soft power. NDTV Anviksha, ideas across borders. The Nepal Dialogue, 27th August, Kathmandu, Nepal. A new Nepal, new possibilities, a new opportunity for regional cooperation.
1: Now, one of the other big changes was Smriti Irani. She's now General Secretary. She comes back into the fold and will be looking ahead at women's issues and certainly the Uttar Pradesh elections. Well, last year, she spoke to my colleague Shiv Arur, where she said that she's not quitting politics but taking a break. That evidently was true. She's back in the fold.
3: Like life comes full circle.
4: Do you miss active politics? You know, politics
3: but
4: goes up and
3: I'm
4: down.
3: Not in active
4: are
3: politics.
4: You still? Do
3: of
4: you still consider yourself a politician?
3: I'm a politician first, but they used to earlier say actor turned politician.
4: Yeah.
3: Somebody last night in some newsroom said, "Well, actor turned politician turned actor turned what?"
4: Yeah.
3: The idea that a human being could do both and successfully so is an idea which will be very difficult to grasp. Because I'm the only one who's done it.
4: No, because I know you keep in touch with Amethi.
3: I don't
4: you keep visiting.
3: In touch. I am working.
4: You've got a base there. You're still working.
3: But
4: there.
3: I'm working not only in Amethi. I'm working. I was last dispatched. You're given assignments within your organization.
4: Yeah.
3: My last assignment was in Bikaner.
4: Right.
3: Before that, I was dispatched to Ranchi, Jharkhand. So the organization keeps giving you work, and you have to work according to whatever your leadership decides.
4: Yeah, right now, in front of you, Ms. Irani, is this big TV project. It's obviously going to be a big thing. You know, it's going to run for a while. It's going to take up a lot of your time and energy. Do you see actor turning back into a full-time politician
3: but
4: at some
3: I
4: point?
3: I am a full-time politician and a part-time
4: actor. So this is just a side project then?
3: It is a side project. For most consumers, the project is not one individual.
4: Yeah,
3: it's always a group of actors coming together, a group of writers coming together. I am, yes, very humbly so, the most recognizable face out of that mix of people.
4: Yeah.
3: But I'm a full-time politician, a part-time actor, just like many politicians are part-time lawyers. Lawyers, part-time teachers, part-time journalists. I just happen to be a bit...
4: So you're a full-time politician who's taking
3: actor,
4: some time out to do this show.
3: No, I've done it simultaneously, which is what I think is difficult to grasp. But like I said, the only difference between me and my other political colleagues is they are part-time lawyers and there's no videographer along with them. There's no makeup person along with them. There's no script writer.
4: Yeah.
3: It's just that we're all from different vocations. I'm just the one in the spotlight.
1: The Prime Minister's Dimagi Naxal remark has now turned into a full-blown political face-off, with the BJP and Congress trading sharp attacks over Prime Minister Modi's Independence Day speech. Reacting to the Prime Minister's warning against what he termed Dimagi Naxals, the former Home Minister Mr. Chidambaram responded by declaring himself to be a proud Dimagi Naxal. He dismissed the term as a new variant of what he called the BJP's old abuses against the opposition that triggered a strong BJP counter. The Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijuju called Mr. Chidambaram's remark unfortunate and highly damaging, insisting that the Prime Minister had not called opposition leaders Dimagi Naxals, but those who backed Maoists and reject the constitution.

0: BJP leader Ravishankar Prasad also hit out at Mr. Chidambaram, calling his statement shameful and irresponsible.
1: पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, इट वुड नॉट बी एन एग्जैगरेशन टू से दैट द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म इज द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एवर फेस्ड बाय अवर कंट्री. और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे मगर जिस विवशता के चंगुल में जकड़कर और नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने. मगर देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं. तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब.
2: अगर प्रधानमंत्री जी जरा सी नजरें झुका के देख लें तो अपने इर्द गिर्द अपने चारों तरफ वही मिलेंगे जो संविधान को नहीं मानते, वही मिलेंगे जो देश के अंदर नफरत बांटते हैं, वही मिलेंगे जो धर्म देख करके लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वही मिलेंगे जो दूसरों के धार्मिक स्थलों को तोड़ने का काम करते हैं, वही सब लोग मिलेंगे जो जाति देख करके उनकी बारात नहीं निकलने देते, वही सब लोग मिलेंगे जो आदिवासियों को उजाड़ने के अंदर विश्वास रखते हैं. सब लोग प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द आपको मिल जाएंगे.
0: Well, the Vijay government has now completed its first 100 days in Tamil Nadu, with the Chief Minister highlighting a series of initiatives and investment commitments. The government says Tamil Nadu secured 67,542 crores in investments during the first 100 days, while also announcing a 1 lakh crore investment conclave. Among the achievements listed are the closure of 717 liquor shops, a women's safety task force, anti-narcotics measures, skill training for 12 lakh people, and expanded welfare schemes. Meanwhile, the Tamil Nadu leader of opposition, Udayanidhi Stalin, said that the ground reality is different than what the chief minister has listed as achievements. Not only the DMK, but the AIADMK and the BJP have also taken jibes at the chief minister, Vijay, and called his 100 days, 100 days of real government.
3: Ninna kaidu, nadanda kaidu, pesana kaidu, social media la oru post pota kaidu appadina, oru mosamana fascist saga indrikku indha arasangam seyalpattu varugirathu. Andha alavukku indha arasukku இன்செக்யூரிட்டி ரொம்ப அதிகம். இன்னைக்கு தூங்கி எந்திரிச்சா யாரை கைது பண்ணலாம்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு ஷெட்யூல் போட்டு இன்னைக்கு இந்த அரசு கைது நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருது.
4: 100 டேஸ் ஆஃப் கிண்டர் கார்டன்ஸ், நாட் ஷுர் வென் தேர் கோயிங் டு கிராஜுவேட் டு தி ஸ்கூல் லெவல்ஸ், ஹை ஸ்கூல் லெவல்ஸ் அண்ட் டெலிவர் ஃபார் தி வெல்ஃபேர் ஆஃப் பீப்புள் ஆஃப் தமிழ்நாடு. அண்ட் மிஸ்டர் விஜய் இஸ் தி நம்பர் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் இன் தி கிண்டர் கார்டன், என்டர்டெய்னிங் ஆல்